0: थोड़ा खाया पचाया, ज्यादा खाया पछताया।
1: जी हाँ, हम वापस आ गए हैं गाना के बाद, और गाना में तो फिर आपने सुने हैं और ज़रूर से हंसती मस्ती इसमें आपको भी आए होंगे, और शब्द हम तो क्या कहें, अगर आपने गौर की होगी तो शब्द तो अपने आप ही कह दिए। और ये मुझे अच्छा लगे कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाना, और बहुत ज़्यादा नहीं खाना ताकि आपको पछताना पड़ेगा। तो ये आपको भी पता हो गया ना कि कभी पेट भर जाते हैं पर मन नहीं भरता, तो दोबारा हम स्कैप करके खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट के लिए, और जब पेट बहुत अधिक भर जाते तो हम बहुत ज़्यादा भी बवेख नहीं कर पाते हैं तो पछताते हैं, तो ये नहीं चाहिए। और जैसे हमने सुना है थोड़ा से कम खाओ ताकि थोड़ा से लुख्त भी जर है माख में, तो पचाने के लिए फरतेर करे खाद भी बहुत आसान हो जाता है।
2: सही बात शांता जी, ये तो है।
1: हाँ अच्छा, तो हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। इस पे आपको कुछ कहना है संजय जी?
3: मेरे को कुछ नहीं कहना है शांता जी, मुझे तो ये बात हो जाता है कि हम और क्या संदेश अभी और सुनने वाले हैं, क्योंकि बबली जी तो अपना और जो यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुए हैं आज का संदेश में, तो बस यही हमारे सुनने वालों भी इस बात के लिए और बेचैन हैं कि अभी और क्या संदेश रखने वाले हैं, क्योंकि आज इस बात को हमें पता चल गया कि किस प्रकार से अगर आपको यूरिनलाइजिंग में जबकि और जा कर के कुछ बझाव आ गया, कुछ मुश्किल आ गया, तो कैसे आप बस यही ऐसे छोटे छोटे और संदेशों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और भी संदेश बबली जी ने रखे हैं, पर आगे का संदेश क्या है?
1: मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ संजय जी, अभी आपने फिर कैसे आपने फिर कहा प्लस के बारे में, उसके बारे में अबे गत दिनों हमने एक ऐसे ही कुछ संदेशा पढ़ी हूँ कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हो या गाड़ी को चलाने को जा रहे हैं, तो हमने पढ़ी हूँ कि आप गाड़ी चलाने से पहले पेशाब कर लो ताकि आप सफ़र अच्छी तरह से कर सके, और हो आपको लोपक की ऐसा ना हो कि कभी काल के जो एक्सीडेंट होवे, तो अगर आपके यूरिन ब्लास लेख रहेगा तो उस पे जोर कम पड़ेगा, और अगर यूरिन ब्लास भरा होगा तो मुमकिन है कि वो फट सकता है, और वो जो फट गया जाएगा उस एक्सीडेंट से तो इनवेंडक ब्लूडिंग होगा, तो आप तो जानते हैं कि आप उस पर तो जल्दी से फॉरहॉल पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप बाहर जाओ सफ़र पे तो दो बार या तीन बार जय बार हो सके, ताकि जैसे हम एयरपोर्ट पे जाए तो वहाँ पे भी आप टॉयलेट है तो वहाँ पे जाकर प्लस कर लो, घर से निकले गाड़ी पे तो गाड़ी चलाने से पहले भी घर पे प्लस करके तो निकले।
3: यानी कि हमें अपने आप को हल्का करके निकलना है।
1: बिल्कुल सही।
3: सुनो वालों, हम अभी और संदेश आपके लिए रख रहे हैं।

0: सुनने वालों, अब मैं संदेश को आगे बढ़ाती हूँ। देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि ना हो सके तो समय रहते समय बदलवा लें, इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमबोर्ड के पास एक हैंडल लगवा लें, कमज़ोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है।
1: बबली जी, अभी आपने पढ़ी है कि देसी और विदेशी टॉयलेट,
0: हाँ जी,
1: शौचालय,
0: हाँ जी शांता जी,
1: उसका मतलब मैं नहीं समझी।
0: ओ, उसका मतलब ये है शांता जी कि भारत में देसी शौचालय, देसी जो पुराना स्टाइल का जो नीचे बैठ के करते हैं।
1: अच्छा, हाँ, जो घुटनों पे जाते हैं।
0: हाँ जी, घुटनों वाला वो देसी है।
1: अच्छा,
0: और विदेशी है, यूरोपियन है,
1: जैसे आप चेयर के जैसे बैठते
0: हैं। सही बात।
1: ओ, ऐसे, अच्छा, तो ये है देसी और विदेशी। तो आपने कहा कि विदेशी वाला और सही है।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: अरे जो 55 साल से उम्र के लोग हैं उनके लिए।
1: हाँ, वाकई में। हाँ,
0: बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टॉयलेट जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल से पहले खींच कर जरूर जांच पर रख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलने से बच सकें।
1: हाँ, आप तो एकदम स्पष्ट से बता रहे हैं कि आज के दौर पर यह भी इस्तेमाल होता हैगा बुज़ुर्गों के घर में, और न सिर्फ बुज़ुर्गों के घर में, अगर आप समझे कि आपको भी दिक्कत है या खसौंथाइट प्रॉब्लम है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुबरमात एम बत कामर एन हो खस्तुल ओम फैल खोपत सेत एन तो कन दुश आन क्लेद आफ्तरोख। और आपने कहा हैंडल जो पकड़ के आप अपने आप को टॉयलेट पॉट पे बैठ सकते हो और अपने आप को खींच कर खड़ा कर सकते हो।
0: सही बात शांता जी।
1: और जैसे आपने कहा कि उसका एक सोख नाप होते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो अद्रोह कहते थे आप पकड़ो, पर बैठने से पहले वो हैंडल आप पकड़ के देखो या अभी वो ठीक से लगा है या नहीं, वन कभी कभी वो गिर निकल जाता है।
0: सही बात।
1: इस पर आप भी सावधान करना। जी हाँ, आगे बढ़े।
0: हाँ जी, जरूर। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी सोख लें। कुछ सेकेंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडर गारमेंट हो या कपड़े, अपने चेंज रूम या बाथरूम में ही पहने। अंडरवियर, पजामा या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पायचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा, घटना घट सकती है, क्योंकि इफ अवे स्टोरनेस हो, इफ अवे हेड बैलेंस

0: कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया या तलाशा जा सकता है। भूलने की आदत हो तो आवश्यक चीज़ों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस पर डाल लें, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोज़ाना लेनी हो उनकी प्लास्टिक के प्लेनर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिन वार के साथ रखी जा सकती हैं। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाएं ले ली हैं या भूल गए, प्लेनर में से दवा खाने में चूक नहीं होगी। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, अब आपका शरीर आपके मन का ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं रहा। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलने, पार्क में जाने की आदत ना छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग व व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम होता जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे।
1: आपने इतने सरल तौर पे हमको समझा दी है कि उम्र के साथ ये ना सोचो कि हम बूढ़ा हो गए हैं या उम्र के हो गए तो हम बंद कर दें चलने के लिए, वॉक करने के लिए, योगा करने के लिए, बल्कि ये सब अधिक ज़रूरी है। हम बाहर जाए, ना सोर्स ऑफ फ्रेश एयर ले, अपना देही के जो है उसको इस्तेमाल में रहे, रेस्ट करे, योगा करे, ताकि फ्लेक्सिबल रहे। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो हमारा देही जो है वो कैसे कहते फ्रुस्त हो जाएगा, जाम हो जाएगा, काम में नहीं ला पाएंगे।
0: सही बात शांता जी, और हमेशा हम दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहेंगे,
1: तो ये हमको नहीं होना चाहिए। और हमेशा जो आप कर सके तो अपने आप करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर सकते हो ज़रूर से करना।
2: शांता जी, इसमें मैं भी कुछ और जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि हम शायद यहाँ ऐसा एक देश है जहाँ पर व्यवस्था खूब बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप त्रैम में जहरना चाहते हो तो अब त्रैम भी बदल दिया गया है कि एक ही एन फ्लोर, और जैसे पहले हम लोग सीढ़ी आदि पे चढ़ करके और अंदर जाते थे, तो और यहाँ पर जो त्रोतवार होते हैं वो भी, और कहीं कहीं ऐसा बना दिया गया है कि लोग के व्यवस्था यानी कि फॉर थमक फनवंस। पर ऐसा जब देखा जाए कि हम लिफ्ट आदि जो घर में लिफ्ट होते हैं ना, तो लिफ्ट से हम जाए या सीढ़ी से जाए, कैसे हमारा और शरीर और तगड़ा रहेगा। इस पे हम ऐसा हुआ बहुत साल पहले, और हम अपने आजा जी के साथ और भारत गए थे, तो उनके घर पे आ रही थी वो जो फिशो तेरा पैत आ करके और घर पे मदद करते हैं, फिशियो कराते हैं। पर आजा का साथ हम गए थे भारत, और भारत गए तो वहाँ पर कुछ तीर्थ स्थान आदि पे गए, तो जैसे कि तीर्थ पे और जाना है तो कोई भी तीर्थ स्थान खलाइक्स फ्लूर नहीं होते, कहीं पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है तो कहीं गुफा में जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से हम आजा के साथ और मनसा देवी माता मंदिर को गए थे, जहाँ 100 सीढ़ी को चढ़ना है और धीरे धीरे सही, पर आजा जी चढ़ गए थे 100 सीढ़ी। अब 100 सीढ़ी पर वहाँ से जब आए भारत, फिर अपने घर पे पहुँचे तो फिजियोथेरेपिस्ट जो था ना, उन्होंने कहा कि आप अपने दादा, अपने आजा को हर बार हर साल ले जाओ। बोलो वहाँ से आकर के इतना फ्लेक्सिबल हो गया है और हमें कुछ करवाना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे संदेश ये है कि जैसे कि अभी शांता जी ने, बबली जी भी ने कहा कि आप अगर आप अपने आप को बांध देंगे और कहेंगे कि आज नहीं निकलूंगे तो 6000 स्टाप जो आपको रखना है उससे आप,
1: हाँ तो उससे आप चूक हो जाएंगे। 6000 स्टाप जाने के स्थापत टेलर जो यहाँ पे हम डाउनलोड कर कर अपने फ़ोन पर धर सकते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कितना स्टाप आप रोज़ रखे हो। तो 6000 आप रोज़ रखे तो आपके हेल्थ जो है, खसौंदहत जो है, वो ज़रूर से एकदम ऑप्टिमल रहेगा। और जैसे बबली जी ने कहा कही है कि उम्र के साथ हम सोचते कि हम अच्छा, हमार दिमाग तो ठीक है, पेंच है, पर उम्र के साथ हमार सोचते सोचते वो कम हो, सोच कम हो जाते हैं, याददाश्त जो है वो कम हो जाता है। तो बबली जी ने जैसे कहा कही है, एक जैसे आप चाबी रखते हो ना, चाबी तो ओके एक फास्त जगह, एक प्लेक बनाओ जहाँ पे आज उसको वहीं पे रखे और हमेशा वहीं पे रखे। अगर आप एक बार उसको हटा कर दूसर जगह धर दोगे तो आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा खोजने के लिए कि वो चाबी कहाँ है। इसलिए बबली जी,
0: शांता जी, खाली चाबी नहीं, औरतों की मैंने देखा है आदत होती है गहने इधर उधर रख दिए। हाँ। अपने गहने एक जगह पे रखो, अपने पैसे भी संभाल कर एक जगह पर रखने चाहिए कि जिससे ढूंढने में आसानी हो।
1: जी,
2: इस बात पे तो मुझे औरतों के लिए नहीं कहना है, क्योंकि आदमियों के लिए भी ये कहना चाहूँगा शांता जी कि कभी कभी लोग खोज रहे अपना चश्मा। हाँ। खोज रहे और चश्मा सिर पे लगा हुआ, तो ये आदमी के लिए मैंने रख दिया।

0: सुनने वालों, अब मैं एक संदेश और रख रही हूँ। एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें, नोन अर्थात नमक, भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें, मौन, कम से कम आवश्यकता पर ही बोलें, कौन, मसलन कौन आया है, कौन गया है, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलंदाजी कम कर दें। नोन मौन कौन के मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपयोग कर पाते हैं।
1: आपने कहा कौन, बबली जी कौन, यानी कि कौन आया कौन गया, तो हम डच भाषा में कहे बमुई है संजय जी, बमुई है। तो अवृत अवस्था में ये सब हम चाहते हुए पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तकरार होता है, तो ये हमको नहीं चाहिए। अगर हमको अपना अवदाह हंसी खुशी से जीना हो तो ज़रूर से हंसी खुशी से जिए और इस पे दखल ना दे। और आपने कहा नमक, नून,
0: हाँ जी
1: नून, हाँ, तो आपने एक और शब्द सीख ले सुनने वालों, नून का मतलब है नमक। नमक भी थोड़ा कम खाए, जाके आपके ब्लड बीपी, ब्लड प्रेशर, हॉक ब्लूट, उस वो भी थोड़ा से कम रहे। और हम देखे हैं मौन, चुप रहना,
0: सही बात।
1: कहते हैं देखते ही मौन रहना ठीक भी है, बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा से हमने समझा दी है जो अपने अपने मस्तिष्क के, अपने दिमाग के हिसाब से हमने थोड़ा से समझा दिए, थोड़ा, ताकि हम इसे और अच्छे से समझ जाए।

तो शांता जी, मैं एक संदेश और रखने जा रही हूँ, जो है कि जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करने जाना पड़ता है। अच्छा। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब जब ऐसी घटना हुई है, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में ही मृत पाया गया है। ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि कल ही हमने इनसे बात की थी, ऐसा अचानक क्या हुआ या कैसे मर गया। इसका मुख्य कारण यह है कि रात में जब भी हम मूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, तब अचानक या ताबड़तोड़ उठते हैं, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंचता। यह 3.5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि जब हम पेशाब करने उठते हैं, तो हमारा ECG का पैटर्न बदल सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक खड़े होने पर मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता और हमारे हृदय की क्रिया बंद हो जाती है। 3.5 मिनट का प्रयास एक उत्तम उपाय है। नींद से उठते समय 0.5 मिनट गद्दे पर लेटे हुए रहिए, अगले 0.5 मिनट गद्दे पर बैठिए, अगले 2.5 मिनट पर पैर को गद्दे के नीचे झुलाते छोड़िए। यह 3.5 मिनट के बाद और हृदय की क्रिया भी बंद नहीं होगी, इससे अचानक होने वाली मौतें भी कम हो जाएंगी।

0: कितने सावधानी के बात हमने यहाँ से सुने हैं सुनने वाले ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और वो भी बबली जी के मुख अरविंद से, कि हम रात में जो पेशाब करने को जाए या पानी पीने को उठे बैठे तो तुरंत नहीं खड़ा होना चाहिए, जैसे बबली जी ने अभी पढ़ के बताई है। कारण कि जल्दी खड़ा होने के वजह से हमारे सिर पर खून नहीं पहुंचते हैं, तो इससे हम चक्कर खा जाते हैं और हम गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा हम गिरते हैं कि हम पता नहीं किस तरह से हम गिरे, हमें कहाँ चोट आए कि हमारा मौत हो सकते हैं। और जल्दी से ब्लूत हेरसन में जब ब्लूत ना पहुंचे तब दौरा भी पड़ सकते हैं। ऐसे तो हमने सुने कितने मिनट के आपने कहा, 3.5 मिनट में हो जाते हैं,
1: 3.5 मिनट,
0: 3.5 मिनट में ये ऐसे घटना हो सकते हैं। तो आप जो सुने हैं सुनने वालों, तो आप इस पे जरूर से सावधान करें। ये मेरे लिए भी लागू है, आज नहीं तो कल हमको भी ये सब इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ कहना है संजय जी?
2: कहना तो कुछ और नहीं, क्योंकि इन बातों को सुन करके हमारे लिए भी लागू हो सकता है, क्योंकि ऐसे हम ध्यान देंगे और हमारे सभी सुनने वालों इस बात को सुन करके, लोग क्योंकि लोग जानते हैं इन बातों को, लोग जानते हैं इस बातों को, और फिर भी हर साल में जब देखा जाए कि कितने और लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं ना, अचानक खड़े हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और जैसे कि अभी आगे में मैंने कहा था भी कि और सिर कहीं और ऐसा लग जगह लग जाता है, तो आपको और ये कभी बहुत महंगा हो सकता है। दोस्तों, हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ और भी संदेश है ना बबली जी?
0: उसके मैं ये कहना चाहती हूँ संजय जी, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है कि आप ऐसे अचानक से थरा हो जा, ताकि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए, ये हमारे लिए भी है, नवयुवक के लिए भी है।
2: तो शांता जी, ये कहने के तात्पर्य है कि आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं, और सीधे कह दे तो कि क्या हम भी बुजुर्ग हो गए क्या?
0: बुजुर्ग तो नहीं हो गए हैं, पर इस पे सावधानी रहे कि
2: जरूर जरूर हमारे हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी कि इस बात को ध्यान देना, और ध्यान इस तरह से देना है कि ये मत कहना कि फाहुन रेडियो के द्वारा आप सुन करके और ये संदेश को नहीं पहुंचा होगा आपको। हाँ। तो हमारा जो ये डायरेक्टर जो हम सब के लिए समय निकालते हैं और ये कार्यक्रम को हमारा खोजी सेना जो बना करके हम सब के लिए रख देते हैं, तो हमें बस आपके लिए प्रेजेंटेयर करना है, पर संदेश उसमें क्या निकालना है ये आप पे रखा जाता है।
0: हम ये भी बबली जी से पूछना चाहती हूँ, बबली जो पढ़ के हमके सुनाए, पर बबली आपका क्या विचार है इस पर?
1: मेरा तो ये विचार है शांता जी, पहले मैं अपनी बात ही करती हूँ, दूसरों की तो बाद में करूँगी। हाँ, क्योंकि सबको ध्यान देना चाहिए, मेरे को भी ध्यान देना चाहिए कि रात को जब उठते हैं तो कैसे उठें, सावधानी कैसे बरतें, और कैसे कैसे सब काम करें।
0: अच्छा जी, हाँ, सावधानी तो हरदम अपलेतन से इन ओपालस याद आते सही बलांग रहे इन आला लिफ्ट एट आला कोतखुरी।
1: सही बात
0: जी।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और संदेश में रखा गया कि हमारे बुजुर्गों जो और जा करके किस प्रकार से कैसे और कुछ चीज़ों से बच सकते हैं, उस अंतर्गत में आज का संदेश जो स्वस्थ और ठीक रखने के लिए और जो रखा गया, हम जो शांता जी इस पे जब देखा जाए कि सूरीनाम में कैसे और किस प्रकार से, क्योंकि सूरीनाम में शायद फित जो लोग रहते हैं ना, तो गर्मी में गाय आदि को जानते हैं खेत में चराने को या लाने को, तो शायद उस तरीका से लोग और फित भी रह सकते हैं ना।
1: हाँ संजय जी, आप कहते हैं ये तो आज के दौर में नहीं होता है, पहले में होता था
0: जरूर। आज हाँ, के दौर में
1: धान
0: में
1: धान लगता था, गाय सब चराने जाते थे, खेत में कार्य होते थे, पर आज के दौर में ये बहुत कम हो गए।
0: बिल्कुल, वहाँ पे भी और सभी के घर पे गाय नहीं होते आजकल,
1: नहीं,
0: और सभी के घर पे धान भी नहीं बोया जाता
1: नहीं।
0: तो हाँ। बबली जी ये बताइए, क्या आप भारत में धान

0: तल भी होने लग गई है पंजाब में। सोनू
1: ब्लूम,
0: हाँ जी
1: सोनू ब्लूम तेल, तो बहुत अच्छा है।
0: तो जब हम जाते थे तो हमारी नानी ने कहना और मामी ने, अरे हमें नहीं हमारे भाइयों को, तो कि जाओ अपने मामा को खेत में
1: खाना ले जाओ,
0: खाना ले जाओ।
1: हाँ।
0: तो वो एक एक चीज मेरे डोलची कहते पंजाबी में, उसमें पानी भर लेते थे और खाना वो एक टोकरी में, तो ऐसे मांचे में तो लेके जाते थे। तो वहाँ देखना, तो मामा ने फिर वहाँ काम करते, और जो बिहार से भी लोग जब फसल कटती थी तो वो लोग आते थे, उनके रहने के लिए टेंट बनाए जाते थे, वो उसी में रहते थे उतने एक दो महीना और सबकी फसल कटवाते थे
1: ऐसे।
0: हाँ
1: मैं आपके आप बता रहे हैं ना, मैं आप
0: समझे नहीं,
1: समझी देख रही हूँ जैसे।
0: ओ अच्छा अच्छा
1: जी, वो सब नज़ारे।
2: शांता जी, ये बात के हमें भी कुछ ख्याल आ गया कि पहले जब हम लोग के सूरीनाम में और धान बोया जाता था ना, तो हमारे जो जाबी जो यफान रहे होते थे तो वो लोग भी आ करके और ऐसे ले लेते थे कि एक गट्टा बनाया जाता था, गट्टा कहते हैं ना जहाँ पर धान को बोया जाता था, तो एक गट्टा को और अपने कितने प्राणी यानी कि मलाई जो हम कहते हैं तो वो ले लेते थे उसे, और कहनी कैसे देवरकों की चाप कहते थे, और उन्हें बो करके और फिर खत्म करके फिर जाते थे।
1: अच्छा हाँ हाँ।
0: शांता जी, एक जगह पे वो पहले घास की तरह होता धान, तो हाँ, हरा वाला कच्चा,
1: हाँ,
0: उसे वहां से काट के तो गीले खेत में वहां पर पानी भर देते रात को, तो वहां पर फिर एक एक ऐसे लगाते हैं।
1: हाँ वो तो, पहले सूरीनाम में भी होता था।
0: हाँ तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जो हम देखते थे अपनी नानियाँ जाके, वो बता रहे।
1: हाँ ना आप बता रहे तो मेरे को सूरीनाम वाला नजारा याद आ जाती है
2: कि एक एक गो और जा करके सभी लगाते थे और
1: लाइन में ऐसे स्त्री या पुरुष साथ में बस लगाते थे।
2: हमारे सुनने वालों भी इस समय जो सुन रहे कुछ जो अपने जीवन में धान को लगाए हैं तो इस बात को शायद उसे भी ख्याल आ गया।
1: हाँ आज के दौर में नहीं लगता है, पहले खंडाल में ना लैदिंग में कॉमिसारस वैतिंग वैक में यहाँ पे ये चले इसे या शहर को आने जाते तो उस वो गली में भी लैदिंग में भी ऐसे पहले धान सब लगाते थे। आज नहीं लगते हैं पर आज हम बात करते हैं आज के नवयुगों के साथ है, तो मैं जो मैं गई थी तो मैं बात कर रही थी कि पहले यहाँ पर सब में धान लगता था, तो वो लड़का जो लड़की तो मेरी तरफ ऐसे देखते थे ताकते थे फान है? आप क्या कह रहे हो?
2: बात यह हो गया कि सब अब शहर बन गया ना, सब फरहार दवेख हो गया है, और जरूर जब पहले 400,000 आदमी सूरीनाम में था तो अब लगभग 600,000 से ज़्यादा भी हो गया होगा, और तरक्की हो रहा है देश आगे, यानी कि परिवार आगे बढ़ते गया है, तो जो जो जमीन होते थे उसमें भी लोग रहने लगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ते गया ना।
1: हाँ वो तो उस दौर पे तो सब आगे बढ़ते गए, पर जो जो नज़ारा पहले था खेती बाड़ी के वो कम हो गया।
2: जरूर हमें भी इस बात को सुन करके अच्छा लग रहा है कि पहले का और अब का समय पर, समय पे ध्यान देते हुए हम देख रहे हैं हमारे प्लेयर पे वही गीत और चलने वाले हैं।

0: इस सुंदर गीत के साथ हमारा यहाँ पर आरंभ जो यहाँ से समाप्त होने को आए गए प्रोग्राम, तो समाप्त करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि वच साइट सोल्यू ओस्तन वच ऐसरा ट्रैक आन वच खेफ सोल्यू ओनफांगन एन वच खलूफ क्रेह खदान। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम स्वीकार कीजिएगा।
1: तुझको पुकारे बन के

नफरत तपती धूप है भाई, प्यार ही शीतल छाया है। नफरत देती दुख ही दुख, तो प्यार ने सुख पहुंचाया है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

सुनने वालों, यहाँ तक था कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो अपने समाप्ति की सीमा पर रहा करके पहुँच चुके हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

तड़पता रहा दिल हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रह गए तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

और आपको आज भी हम कोई प्यार भरे गीतों से, आपको हम प्यार भरो गीतों से मलामाल करेंगे कि आज गालो और मुस्कुलारो, महफिल भी सजा लो, ना जाने कल कभी कोई साथी छूट जाए। और फिल्म के नाम है ललकार, परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और दोस्तों आपको हम और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो गीत है गंगा जैसा मन तेरा। गंगा जैसा मन तेरा है और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

तुम तो ठहरे परदेसी और सियात क्या निभाओगे जरा बताओ। अगर जब आप किसी परदेसी से प्यार करेंगे तो उसको कौन भरोसा है, कौन भरोसा है कि वो साथ तेरे साथ वो निभाएंगे। तो हम चलते हैं अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित का जिसमें काम किया है, फिल्म के नाम है खलनायक की ओर।

और पालकी में होके, और पालकी में होके सवार चलिए, और मैं तो अपनी साजन की और द्वार चलिए, और चलते हैं अलका याग्निक कुमार शानू की ओर, जिस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया है महिमा चौधरी के साथ। तो चला जाए अलका आपकी आना और दिल में धड़काना।

और महीनी लगा कर और खुद चले आना, और जब महीनी लगेगी तो प्यार जरूर आएंगे हमारे दोस्तों। चलते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की ओर। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने काम किया है, और दोस्तों आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है, और ये बहुत मस्त फिल्म के नाम है क्रेडिट्स भैया। हाँ,

और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ पुरानी और मिले जुली गीत को हम सुनाएंगे, कोई बेवफाई या प्यार का शेर भी आप लोग को हम सुनाएंगे। यानी कि आजकल के ज़माना में बेवफाई एक काम हो गया दोस्तों, और बेवफाई बहुत लोग करते हैं और वो करके कभी पछताते नहीं हैं। तो जितने लोग बेवफा है उस सब के लिए हम ये गीत यहाँ से चलाएंगे, लेकिन कहेंगे ज़रूर तू हज़ार बार भी रोते तो मीना, तू हज़ार बार भी रोते तो मना लूँगा तुझे, मगर देख मोहब्बत से समय दो मोहब्बत के शामिल कोई दूसरा ना हो। समझ गए ले दोस्तों कि किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम चलते हैं एक भड़कते हुए और बेवफाई गीत है, फिल्म के नाम है ओ बेवफा, जिसमें अक्षय कुमार करीना कुमार ने काम किए हैं, करीना कपूर दोस्तों और सोनू निगम इस गीत को गाया है।

और एक बेवफा है और वो भी बेवफा है। फिल्म का नाम है बेवफा। और कहते हैं ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है जो किसी का नसीब में होता है। हमारे सुनने वालों, ये बात है कि अगर जो आपके नसीब में ये हो तो वो खुद ही चल करे, वो खुद ही चल करे आएंगे। कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, तकदीर की कोई भी मजबूरी नहीं होती। तो हम चलते हैं। क्या तुम्हें पता है हमारे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है अए गुलशन, अए गुलशन, क्या तुम्हें पता है, आओ सुना जाए।

0: for more entertainment.
1: और क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, फिल्म के नाम है दिल है बेताब, उदित नारायण का गाया हुआ, और ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों कि कहते हैं कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। वाह वाह वाह, अपना दिल आपको हम देंगे खेलने के लिए। और फिर कहते हैं कि तेरा साथ है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, तेरी हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, मुस्कुराते रहना इस तरह हमेशा, क्योंकि तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है। तो चलते हैं, तू प्यार तो प्रीत पराया धन, फिल्म के नाम है राकेश रोशन, हेमा मालिनी ने इसमें काम किए हैं, आओ सुना जाए।

Wat een romantische zong. Tu piar, tu priet. Film ke naam he, piara, paraya, dhan dosto. Paraya, dhan se is romantic song ko humne nikaal kare. Aur aap log ke kaano tuk radio phone ke madhyam se. Aur humne pahuncha diya hai. Agar mohabbat nahi thi, to bata diya hota. Agar mohabbat nahi hoti, तो बता दिया होता तेरे एक चुप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तो मोहब्बत में तो लोग बर्बाद होते हैं भी दोस्तों और कहते हैं कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए पैसा नहीं मिलती कौन कहता है कि ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती ताजमहल बनाने के लिए दौलत तो मिलती है मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती तो ये बात तो है ना हमारे यारो तो हम चलते हैं और एक रोमांटिक सॉन्ग है लव गैम्बलर कुमार शानू साधना सरगम का हम उनसे मोहब्बत करते हैं

हम उनसे मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करके और लव कैम्बलर कुमार शानू साधना सरगन का ये सॉन्ग थे दोस्तों। और हम चलते हैं कुछ आंखें की ओर। और आंखें क्या कहते हैं, आंखें कहते हैं, आंखें चाहती है दीदार करना, आंखें चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल को आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। तो दोस्तों आपको हम सुनाएंगे एक गीत, और वो गीत क्या होगा आप खुद ही सुनिए कि मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रख कर देख, तेरे धड़कन ना बजा दूं तो मेरा मोहब्बत ठुकरा देना। तो आंखें के ओर हम चलते हैं, और जब किसी से प्यार करना है तो मत भूल जा दोस्तों कि रास्ता उसका दिल में बनाना है तो उसके आंख में से रास्ता बनाकर उसका दिल में उतर जाना। आओ मिलकर सुना जाए अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग।

और तेरे नैना मेरे नैनों से, और वो क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें कहते हैं कि जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है, जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है ये दिन नया है, निगाहें तुमको देखने चाहती है, मेरे दिल को ये क्या हुआ है। दोस्तों ये बात तो है ना, मिलने तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत ने नहीं था। तो हम चलते हैं आज की बहारों की मलिका।

मलिका अभिज्ञा बताचार्या दस्तूर फिल्म का नाम है रोमांटिक सॉन्ग। तो दोस्तों हम चलते हैं और एक गीत की ओर कि दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ गए, दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ जाएंगे, आंखों में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे हमारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। हम चलते हैं एक गीत की ओर, नाना करते इकरार कर लिया है।

ले लिया और अपना दिल दे दिया। और ये जो गीत आप लोग को प्लेयर पे रख दिया है, उंगली में अंगूठी है और अंगूठी में नगीना है, ये तो आप लोग सब जानते ना। आ मिलके इस गीत को सुना जाए।

0: भाई राजकुमार लक्ष्मण की आवाज में हम सब ये सुंदर सा भजन सुने।
1: सीधा नमस्ते।

ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है।

वालों की सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे। सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। आज जिनका जन्मदिन है बधाई देना चाहता हूं। जो सफर पे जाने वाले हैं उन्हें हम शुभ यात्रा कहते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं अभी निकलने के लिए अपने नौकरी को, और उन्हें हम ये कहते हैं कि दो दो हाथ दो दो पाओ और साथ में दिमाग से काम करना। जो हमारे देश में यात्रा पे आए हैं, अनफाइन फकांसी तुखवेंस, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग आते हैं। An Land voll mit Museums, Kunst und Kultur ist dies mehr. जिनका घर आज कुछ कार्य है, कुछ कारज है, उन्हें हम भी बधाई देना चाहता हूं। सभी बच्चों जो तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और जो चले भी गए हैं, तो उन्हें हम एन फाइन डाग टूगवेंस नामंस द हेले फाहन क्रू। सुनने वालों, अभी हम कार्यक्रम भजन जो औखतन प्रोग्राम हमारे होते हैं उस ओर बढ़ेंगे। हमारी पहला भजन जो कनाडा टोरंटो और अम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर यू हिपोटेकन एंड फिनांशियरिंगन, और यहाँ पर आप मालूमात कर सकते हैं। कुछ भी आपको हिपोटेक और फिनांशियरिंग के बारे में जानकारी लेना है तो जरूर आप फोन कीजिए 06-2513-6374। एक सुंदर सा भजन जो हमारे देश के कलाकारों ने और लिखे है सूरीनाम में जाकर, जो 150 साल पहले हमारे पुरखों जो जाकर के सूरीनाम में गए और उस समय अपना कला भी लेकर गए थे और कितने और हमारे लिए छोड़ भी गए। तो हम एक अपना देश के सूरीनाम के एक गायक का भजन आपके लिए और प्रस्तुत करता हूँ।

इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। सुनो वालो, ये भजन जो स्पॉन्सर करने वाले हैं कनाडा और टोरंटो एंड आम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर ऑल यू हिपोटेकन एंड फिनांस शेयरिंगन।

किसी को समझने के लिए भाषा ही हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। सुनने वालों, ये जो भजन चलाया गया दनाख फोर पार्क लाइट्स कफेन आनंद शर्मा जी की ओर से ग्रोथ हैंडल बेफई और जिसका तार का नंबर है 06557328667। कोई भी और सामान आपको चाहिए ग्रोथ हैंडल अर्जुन शर्मा।

अगला भजन जो हमारे और स्पॉन्सर किए गए प्रोग्राम में रखा गया है वो है दनहाख लाइटसफेन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रॉयथ हांडल, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी है। और अगर कुछ भी आपके उससे और मालूमात करना है तो उनका तार का नंबर है 0622795862। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम आपके लिए और प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

सुनने वालों, इस बात को शायद आप कभी सुने होंगे, कि माँ बाप के पास, माँ बाप के पास बैठने से दो फायदे होते हैं। आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं और माँ बाप भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये समझ समझ के समझने वाले बात है। दना फोर पार्क लाइट्सफेन सुंदा क्रूंतन एंड फ्रॉयड हांडल, जिनका मालिक परशुराम मोहलाल जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। सुनने वालों, अगला भजन जो देहा एर बाउ एंड ऑनरहाउस बद्राइफ, जिनका मालिक श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी है, उनका तार का नंबर है 06260024841। कोई भी ऑनरहाउस और बाउ वर्कशॉप है इधर के लिए, अगर आपको और मालूमात करना है तो जरूर उनके आप फोन कर सकते हैं।

इस भजन का स्पॉन्सर करने वाले श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने, जो देन हाग फोर पार्क लाइट्सगेवेन देहा एर बाउ एंड ऑनरहोट्स बदरेव का मालिक है। सुनने वालों, अगला भजन जो देन हाग मैकेन्सराट सेस हिंदू बासस्कूल फाहुन फरेनिगिंग अलगमेने हिंदू ऑनरवाइज नीदरलैंड की ओर से, जो हमारे लिए और ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर किए हैं।

संसार के सबसे सुंदर और प्यारा संबोधन सुबह की राम राम, सुबह की राम राम ही है। सुनने वालों, ये भजन के स्पॉन्सर किया गया है बास स्कूल फाहुन की ओर से, जो दिनहाक में कई सरा छे पे है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी ऑनदरवाइजर्स ऑनदरवाइजरसन, सभी तेरक्सी की ओर से सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों, अगला भजन जो सुरीनाम लिफोर्नो मेनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वेख से, श्री भक्ति राज शिव पार्वती मंदिर, वहां का सभापति सुभाष महावीर जी है, जिनका तार का नंबर है 00597867577। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

किसी ने बहुत अच्छे कहा है, अपने बुजुर्गों की कदर करो, क्योंकि आपने भी हमेशा जवान नहीं रहना। सुनने वालों, ये भजन का स्पॉन्सर किया है सुरिनाम लिफोर्नो मेनकदाम से हुक इंदिरा गांधी वैक श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर, जिनका सभापति सुभाष महावीर जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला भजन दनहाख माताजी लिलियन मोतीराम जी के ओर से, उनके ओर से एक सुंदर सा भजन का मांग किया गया है।

चाहते हो? अपना भाषा को और जानने का कोशिश थोड़ा से करे, करने को इच्छा भी होए तो जरूर चांद गुरबीन जी को फोन लगाइए, जिनका तार का नंबर है 06 45 09 75 26। उनके ओर से एक सुंदर सा भजन।

दो ही चीजें ऐसे होते हैं जिसे देने में किसी का कुछ नहीं जाता है, पहला जो मुस्कुराहट और दूसरा जो दुआ। ये भजन के स्पॉन्सर करने वाले दनाख क्नुतल स्त्रात तीन हिंदी प्रचार संस्था फैमिली चान गुरबीन की ओर से और चलाया गया। कोई भी और प्रश्न रखना है अपना भाषा अपना संस्कृति के अंतर्गत तो भाई चांद जी को और जरूर मालूमात कीजिए।

अगला भजन जो खमींत रात्सलित लैन बाबू राम जी के ओर से, दनहा खमींत रात्सलित लैन बाबू राम जी के ओर से।

ये भजन जो चलाया गया खमीन तरात स्लित लैनो बाबू राम जी की ओर से। हमारा अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की ओर से ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, ये भजन जो स्पॉन्सर किया गया है रोतरम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोतरम वेस्ट ब्लॉक मार्करसराद 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लाइडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की ओर से। यहां तक जो भजन स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाया गया। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपकी ओर से भी एक भजन चलाए जाए तो जरूर हमारे रेडियो आत्मिश्रासी से मालूमात कीजिए। हम सब हर समय तैयार रहते हैं आपकी सेवा के लिए।

सुनो वालो, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है जो डेनहाग शहर से हॉलैंड से और ब्रॉडकास्ट किया जाता है। चाहे गर्मी या सर्दी, हर समय रहता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आपके साथ। मैं हूं संजय और कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये सुंदर सा गीत जो फाहुन रेडियो द्वारा आपको सुनाया गया, आपको एक शुभ दिवस, एक ऐसा दिन हुए जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, कम से कम अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तों, नाते के भूलना नहीं। हम अगले गीत जो चुन करके रखा है, 1981 में निकाला गया ये फिल्म, जो कुछ उस समय पे और ये फिल्म को देखे होंगे,

कुमार गौरव और विजयता पंडित ने इस फिल्म में काम किए। 1989 के ये फिल्म, जो फिल्म का नाम लव स्टोरी से निकाला गया है, ये सुंदर सा गीत। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगले गीत का बोल क्या है कि अभी तो कोई गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गए हैं तो उसके लिए क्या होना है। कहते हैं बात बिगड़ जाए तो क्या होगा,

बातचीत का बोल जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पल आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत जो खुशियों से भरे हुए है,

ये सुंदर सा गीत जो कॉन्सर्ट में गाया गया और ख़ास करके गाया गया तो हमारे अनाउंसर साथी शांता खेमाई जी और उनके आवाज़ में हम सब सुने। दोस्तों ये बात है कि आज अगर हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करती है। इस पर ध्यान देना कि हर पल हमें आनंद ही आनंद लेना है, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करते हैं। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना। और खुशियाँ कभी बताकर भी नहीं आते हैं और जाते हैं।

ख्वाब में जो कुछ लोग याद रह जाते हैं और उनमें से कुछ लोग को भूल जाते हैं,

गुलजार जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलता। हंसता रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सुनने वालों, जैसे कि मैं देख रहा हूं, हमारा कुलेखा साथी स्टूडियो 2 में उपस्थित हो गए हैं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम थोड़ा से हंसिए, क्योंकि जैसे गुलजार जी ने लिखे हैं कि आंसुओं का जगह आंखों में भी नहीं रहता है, वो भी टपक जाते हैं।

की तमन्ना लता मंगेशकर जी और किशोर जी का आवाज में हम सभी इस गीत को सुनेंगे।

पन्ना की तमन्ना एक फिल्म जिसमें देवानंद जी और सीनत अमन ने अपने काम दिखाए। ये सुंदर सा गीत जो लता मंगेशकर जी और किशोर जी ने अपना आवाज दिए।

तुझे देख कर मेरा दिल खोने लगा, ये सुंदर सा गीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं और शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। बस यहाँ तक था हमारे कार्यक्रम, जो यहाँ से कार्यक्रम हमारे कुलेखा साथी जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, मैं यहाँ से आपसे विदाई लेंगे। आशा ये रखता हूँ कि सुबह से मैं आपके साथ जुड़े आ रहूं सुंदर सुंदर और भजनों के साथ। फिर कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ेंगे।

कहूंगा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। अनफाइन अदाख्तु खवेंस।

उदित नारायण से हमने सुने कि एक दोस्त ढूंढता हूँ, दोस्ती के लिए दुनिया है हसीनों का मेला।

बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा आपका उम्र, यानी कि लाइफ टाइम।

कर ले इश्क मोहब्बत प्यार, हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। सुने वालों, चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ के ज़माना, कितना सब्र होता था, कितना प्यार होता था कि हम इंतज़ार करते थे कि कब कोई चिट्ठी आए, कुछ कोई ख़बर ऐसे आए। और आजकल इतना सुविधा हो गई कि आज तो रिप्लाई ज़रा सा देर हो तो रिश्ते भी टूट जाता है।

कमाने वाले को पता होता है, कमाने वाले को पता होता है पैसा कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं।

अलका याग्निक शंकर महादेवन, हाँ जी शंकर महादेवन ने ये सुंदर संगीत सुनाए कि कोई चाहे तो ले जाए। जो लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, जो लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस तरह से व्यवहार करना बंद कर दिया कि जैसे वो चाहते थे। तो इस बार हम सुनते हैं देवेंद्र सिंह सियुना जी का।

वाकई में बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारा शहर का मौसम वाकई में बहुत सुहाना लगे सुनने वालों। और यहाँ से हम आपको बता दें कि आपका और मेरी यहाँ से मिलन जो है, तो अफसोस के साथ हमारा आपका मिलन यहीं तक है। हम यहाँ से आपसे रुखसत होंगी, कल फिर मिलेंगे। मिलने के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो। ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो, वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ दोस्तों, इसलिए कल का छोड़ो और आज में जी

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम। और हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए आपको अच्छा लगने लगेगा और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन समझे।

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

वहाँ मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर भी जिंदगी। जी हाँ, जैसे कहा हमने कि अनूप घोषाल जी ने यहाँ से हमको सुनाई, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, और हम चल के सुनेंगे वही गीत लता जी की आवाज़ में।

हाँ मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये लता जी से हमने सुने कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, वही मशहूर फिल्म मासूम पिक्चराइज किया हुआ है नेहंतिन द्रियन तख्तख में।

मोहब्बत है क्या चीज, ये हमको सुनाए लता जी और सुरेश वत्कर जी ने। कहते हैं कि जहां खुशियों का कद बड़ा होता है, जहां खुशियों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। और यहां से मिलकर हम सुनेंगे कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।

तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। ये लता जी के गाई हुई नहीं है बल्कि अलका याग्निक और हरिहरन, हरिहरन और राहुल देव के ये सुंदर सा गीत। और ये फिल्म, नई फिल्म है दिल विल प्यार व्यार से निकाला गया है।

0: सवाल है।
1: कहते हैं कि जीते जी कौन करता है कदर किसी की, जीते जी कौन करता है कदर किसी की। ज़रा सोचो कि जीते जी कौन करता है कदर किसी की। ये तो मौत है, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देते।

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और यहाँ से आपके लिए एक सुंदर सा गीत चुन कर रखी हूँ। लिखने वाले ने लिख डाला, लता जी और सुरेश वर्तकर से सुनेंगे।

लिखने वाले ने लिख डाले। लता जी से सुने लता जी और सुरेश वाडकर। फिल्म का नाम अर्पण। जी हाँ, फिल्म का नाम अर्पण। नेकंतीन द्रियन तख्ता की ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया है। अगर आप किसी को दुखी करते हो, समझ लेना सब कुछ आपको, जी हाँ सब कुछ आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। ब्याज यानी कि रेंट के साथ वापस मिलेगा।

चित्र से फरमाई अलका याग्निक जी ने और फिल्म का नाम फिर तेरी कहानी याद आई। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब पकड़ने वाला नहीं बल्कि समझने वाले मिल जाते हैं।

भला क्या मांगूं मैं रब से, फिल्म थानेदार से यहां से हमने सुने। पंकज उदास और लता जी की आवाज़ में फिल्म थानेदार, जैसे हमने कही है, लेखन तीन लेखन तक की ये सुंदर सा फिल्म है और इसमें काम की है जितेंद्रा और जया प्रदा जी, जितेंद्रा जी और जया प्रदा इसमें इस फिल्म में काम की है। कहते हैं कि दुविधा में रहोगे तो जीवन में कभी सुविधा नसीब नहीं होगा। दुविधा यानी कि दुआलिटेट में, दुविधा में रहोगे तो जीवन में कभी सुविधा नसीब नहीं होगी। जीवन आपका है, जी हाँ जीवन आपका है, तो अंतिम निर्णय भी आपका भी होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटा सा सफ़र है, जिंदगी का बहुत छोटा सा सफ़र है। आनंद लीजिए अच्छे दिन के इंतज़ार में, उम्र गुजर जाती है। अच्छे दिनों की इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुज़र गई है वही अच्छे दिनों था।

शेर दिवाली साईं बाबा सुनने वालों, आपके लिए पेश किया गया है फिल्म का नाम, जी हाँ, अमर अकबर एंथनी। फिल्म का नाम है नेखंतीन सेफन सेफन तखे, पिक्चर आइस की आवाज फिल्म है। सोच रही हूँ उसी फिल्म से एक और सुंदर गीत आपके लिए चला दूँ।

सैयब अली प्यार के दुश्मन, हाय हाय, वही मशहूर फिल्म, जी हाँ, जहाँ से हम उन दिनों में बहुत मशहूर हुआ करते थे। ये फिल्म के नाम जिक्र तो चारों ओर हुआ करते थे, और वही फिल्म है जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी, जी हाँ।

कहते हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। फिल्म ताजमहल से लता और मोहम्मद रफी जी।

जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए यहाँ से चलाया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जहाँ जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है।

बस प्यार ही करते रहना और क्या करे, प्यार करते रहना और निभाते रहना। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को समय देने में उतना ही

और एक बात ये भी जरूर से याद रखना, हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में बुरा वक्त सिर्फ आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये मेरे लिए भी लागू है, जी हाँ मेरे लिए भी लागू है कि ज़िंदगी में बुरा वक्त सिर्फ हम सबको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आते हैं।

दिल में बंद कर दूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। आपको कितने लोग पहचानते हैं, आपको कितने लोग पहचानते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से आपको पहचानते हैं ये मायने रखते हैं।

इतने द टाइटल सॉन्ग उसी फिल्म के, और हम आपसे क्या कहे, आपको हम लेकर चलते हैं फिल्म लवारिस की ओर। पर गीत चलाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि एक सवाल है। आदमी कहता है पति को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, आदमी को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, लेकिन हाथ पत्नी पर क्यों, क्यों सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाता है, अपने माता अपने पिता भाई बहन पर क्यों नहीं? ये एक सवाल है, जरा आप भी पूछो अपने आप से। फिल्म लवारिस से हम ये सुंदर गीत आपके लिए चला।

गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है। फिल्म लवारिस में से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आप ही के लिए पेश किया गया है सुनने वालों। मदद एक ऐसा घटना है, मदद एक ऐसा घटना है, करे तो लोग भूल जाए, करे तो लोग भूल जाता है और ना करे तो लोग याद रखते हैं।

आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है, हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 0 3 5 2 8 4 0 का नंबर है।

होने लगा हो, जैसे मैंने कहा अतीफ असलम के मीठी आवाज में अभी आप ये सॉन्ग को सुना। मीठी आवाज भी है उदित नारायण और अलका, दोनों के मीठी आवाजों में आप अब की बार देखने वालों ने मिस्टर या पद्मश्री उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

अलका एंड ओडिट नारायण का सॉन्ग अभी आपने सुना दोस्तों, किशोर कुमार। किशोर कुमार का एक गीत है, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान और म्यूजिक डायरेक्टर है एडे बर्मन। जैसे आप सभी को मालूम है तो एडे बर्मन और किशोरदा ये दोनों एक दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे दोस्तों आपस में। और कभी कभी एडे बर्मन जी रात्रि में 1 बजे या 2 बजे रात्रि में किशोरदा के घर पर जाते थे और कहता था, किशोरदा कमारी दरवाज़ा खोलो, एक नया सॉन्ग तैयार करना है। इतना गहरा दोस्त था ये दोनों के बीच आपस में। तो इसी फिल्म का एक सॉन्ग है किशोर कुमार के आवाज़ में, हसीनों का पुजारी जिन्हें लोग कहते हैं, हसीनों का पुजारी किशोरदा।

अमर अकबर एंथोनी दोस्तों, ये फिल्म इंडिया में दोस्तों बॉम्बे में, सिर्फ बॉम्बे में 25 बार और 25 थिएटर में लगातार पेश हुआ। जी हाँ दोस्तों, 25 केयर और 25 थिएटर्स में अख्तर मकार ये फिल्म पेश हुआ और एक बड़ा फिल्म था। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है, हमको तुमसे हो गया है। और उन दिनों का जो गायके थे, जो पॉपुलर सांगर्स थे दोस्तों, किशोर कुमार, लता दीदी, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और माइटी मुकेश, ये सभी के आवाज़ों में आप ये सॉन्ग को सुनेंगे।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ सॉन्ग हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करो इश्क छुपता नहीं छुपाने से। वास्तव में दोस्तों ये इश्क जो है एक ऑनखनीस लेकर सीखते है, और ये बीमारी अगर छा जाता है तो इसका इलाज नहीं है। तो हम सब मिलकर सुनेंगे अभिजीत फिल्म बेवफा का सॉन्ग।

इश्क छुपका नहीं छुपाने से तेरे आशिक हूँ मैं जमाने से, यकीन कीजिए दोस्तों लगता है जैसे खुदा ने आपको सिर्फ मेरे लिए बनाया है। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज़, फिल्म अमन का सॉन्ग है दोस्तों, राफ़ी साहब ने गीत को गाया है। और राफ़ी साहब जब गीत गाते थे तब श्यामी कपूर का फिल्म जब रहते थे तो श्यामी कपूर के स्टाइल, दिलीप कुमार का फिल्म रहते तो दिलीप कुमार के स्टाइल, आप सोचते हो कि दिलीप साहब गा रहा है। शशि कपूर के फिल्म में रहते थे शशि कपूर के स्टाइल, राजेंद्र कुमार का फिल्म में राजेंद्र कुमार के स्टाइल, इस तरह का गायक वो था। लेकिन बात यह है कि राफ़ी साहब का बड़ा बेटा से पैरस वाले ने सवाल किया कि आपका पिता किस तरह का आदमी था, तो कहा कि अच्छा आदमी था, जब हम लोग छोटे थे तो हर एक वीकेंड हम लोग को फिल्म ले जाते थे सिनेमा, और हम लोग जब बड़े हो गए तो उसके बाद हम लोग उनके साथ पिताजी के साथ सिनेमा नहीं जाना चाहते थे। तो सवाल किया गया क्यों, तो उसने बताया कि जब फिल्म हम लोग जाते थे थिएटर तो 15 मिनट बाद जब फिल्म शुरू होता, मान लीजिए 8 बजे फिल्म शुरू होता है तो क्वार्ट फराक हम लोग थिएटर के अंदर जाते थे, और फिल्म जब 9 बजे रात्रि को या 10 बजे रात्रि को जब समाप्त होते थे तो हम लोग क्वार्ट फोर उससे पहले हम लोग थिएटर से निकल जाते थे। तो जब हम लोग बड़ा हुआ तो पिताजी से कहा आपके साथ हम लोग फिल्म नहीं जाएंगे, इसलिए कि फिल्म की शुरुआत और फिल्म का अंतिम हम लोग नहीं देख पाते थे। बात यह था दोस्तों कि आप जानते थे एक बड़ा कलाकार था और जो लोग उन्हें पहचान लेते थे तो सब लोग थिएटर में फिल्म छोड़ को ही के घेर लेते थे, तो इसीलिए एक क्वार्टर का फर्क होता था हमेशा। तो लड़का उसका बेटा ने कहा जब हम लोग बड़ा हो गया तो उसके बाद पिताजी के साथ हम लोग बंद कर दिया फिल्म जाने को। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, एक कलाकार है जो उसके तरह दूसरे कलाकार मैं नहीं सोचता हूँ कि दुनिया में आएगा। राफ़ी साहब की आवाज़ में आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

0: to enjoy.
1: सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, कोयल सी है आवाज, क्या बात है दोस्तों, क्या तारीफ किया है राजेंद्र कुमार सायरा बानू को या सायरा बानू का तारीफ कितना किया है इसी फिल्म में। फिल्म अमन का सॉन्ग अभी आपने सुना, शंकर जय किशन के म्यूजिक और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ सॉन्ग अभी आपने सुना। आमिर खान करिश्मा का एक फिल्म है, फिल्म अमीर, फिल्म अमीर का सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ दोस्तों। और ये सॉन्ग पद्मश्री उदित नारायण, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

listen up, yo. It's Valentine's Day.

आपकी का हैप्पी स्टेशन फार ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के से लेकर आना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 3 5 2 8 4 0 या 9 3 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकरण में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 3 5 2 8 4 0 या 0 3 2 0 0 तारकरण नंबर है शान। दोस्तों शान एक गायक है, लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप अभी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

उदित नारायण पद्मश्री। उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखन अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोआलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

तेरे बिना दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना, बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पाम स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे सबसे मोच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चले गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने एक काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जब लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज, दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप

गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा, ये नसारे तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का सब है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत, विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सॉन्गर था दोस्तों। कई गाना वो गाए है, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिन आखन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

0: हाँ हाँ ना खेलब ना खेलब
1: तोरी शब्द में

सो का आज चटनी आप सुनेंगे। सोका चटनी में ओल्ड स्कूल सोका में बेस्ट ऑफ ओल्ड स्कूल सोका

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब कैरमस लगता था करम कॉम्प्लेक्स पर, तो वहाँ लोग जाकर रेह में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना। तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश, और सुरनाम देश के कौन गवैया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

हाय हाय कमली कॉम लेट वी गो नो बाबिल नो बॉडी लाइक टू गो. अब की बार आशनी माता दिन. अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी माता दिन के आवाज में.

आश्री मताधीन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड क्या फरमाएंगे, खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: राय नवा राय नवा राय एक्सक्लूसिव वॉल्यूम 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में
2: सुनिए रे हेंड्रिक्स चूज़वा
3: आई बॉय नाउ इट इज़

है, ऐसा ना होए कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों? सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

गालों शकुरालों महफिले सजालो रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम के ओर और आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत करता है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक महान फनकार, संगीतकार, गायक, क्या क्या नहीं थे हमारे संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह, द वन एंड ओनली किशोर दा के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान एड पुराना मूवी अदा 1951 कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर माएस्ट्रो मदन मोहन जी। दिल गया दिल गया।

A great composing by maestro Madan Mohan from the movie Ada 1951. Also Nadia Apsibiko, Mazedar Gaik, the one and only Hasino Kapujari Kishorda. एक बार और लाते हैं वही महान फनकार जो काफी फिल्मों में काम किए हैं और कितने महान महान गाने भी लिखे हैं, संगीत दिए हैं, क्या क्या नहीं थे किशोरदा, तो फिल्म अप्तनुम संपूर्ण कलाकार जिसे हम कहते थे, देश छुड़ाया बस छुड़ाया, पुराना मूवी चाचा जिंदाबाद 1950, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन।

बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबाहुबा लबालूबा दुम तक दुम तक तक तदुम दुम तक दुम तक तक तदुम बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का डी डाडा बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill in search

क्या बात है, किशोर दा अपने ही अंदाज में आप सभी को अति सुंदर बयान सुनाया। एड पुराना मूवी चाचा जिंदाबाद 1959 मदन मोहन जी के मधुर सांच पर ये मजेदार सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। एक और अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, और ये आप श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि एक फिल्म तैयार हो रहा था जो नहीं निकला, इन रिलीज्ड सॉन्ग, और उसी फिल्म में से मैं ये अति सुंदर बयान को निकाला हूँ आप सभी को सुनाने के लिए। शायद आप पहली बार ये नगमा को सुनेंगे क्योंकि बहुत ही कम चला है रेडियो पर। लड़कियों को चाहिए, मदन मोहन जी के साँच पर नक्श यालपुरी का लिखा।

क्या बात है, लड़कियों को चाहिए। अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। इट्स वॉज एन रिलीज्ड सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आज मुझे जल जाने भी दो, जो कभी नहीं निकाला गया। मदन मोहन जी के साज पर नक्श लियाल पुरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। अगला बयान एक डुएट है, बहुत ही सुंदर बयान है। ईबीसी मेरे सपनों में क्या बात है, पुराना मूवी इल्जाम 1954 राजेंद्र कृष्ण का कलमों से लिखा हुआ है अति सुंदर बयान, कंपोज बाय मास्टरो मदन मोहन। और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को किशोर दा और आशा भोसले जी।

Kya baat hai, ti sundar mazedar song shrotaon ke se mein pesh kiya gaya. Aid film Ilzaam 1954, composed by maestro Madan Mohan aur Kishore Da aur Asha Bhosle ji ke aawaz mein. हमारी पिपली श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए. कुछ ताजे ताजे शेर्स भेजा है यारों का यार भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सिटी. और ये शेर्स कुछ दोस्ती के बारे में जाते हैं, तो जरा गौर फरमाएं. अर्ज किया है यारों की कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, बंद आंखों में सपने सजा लेती है. सपनों की एक दुनिया जरूर रखना, सपनों की एक दुनिया जरूर रखना, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है. काश ये दिल शीशे का बना होता, काश ये दिल शीशे का बना होता, चोट लगती तो बेशक ये फना होता, पर जब वो सुनते ज्यादा इस दिल की, पर जब वो सुनते ज्यादा इस दिल की, या खुदा तब तो उन्हें एहसासे दिल गुना होता. जुल्फे हैं उसकी भीगी हुई रात जैसी, जुल्फे हैं उसकी भीगी हुई रात जैसी, लहजा खुश्क सा है बरसात जैसा, खुशबू से उसकी महकती है कायनात, खुशबू से उसकी महकती है कायनात, उसका ख्याल भी है मुलाकात की जैसा. क्या बात है, आपसे जब हमारी यारी हो गई.

गुलाब हो तुम, रिश्तों के वे फूलों में गुलाब हो तुम। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त सच्चे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त सच्चे नहीं होते, उन लोगों के सवाल का जवाब हो तुम। वाह क्या बात। फिर दिन ढल गया, फिर रात आ गई, फिर तन्हाई में बैठने की बात आ गई। अभी तो तारों की पना में बैठी ही थे, अभी तो तारों की पना में बैठे ही थे कि चांद को देखा तो आपकी याद आ गई। क्या बात है।

याद में बहुत पैगाम मिलते हैं, तेरी याद में गुजारी वो शाम लिखते हैं, वो कलम भी तेरे दीवानी हो जाती है, वो कलम भी तेरी दीवानी हो जाती है जिससे तेरा नाम लिखते हैं। क्या बात है, वाह। ते था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान एक अति सुंदर बयान है, दिल को छू लेने वाला नगमा, और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुर का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी। धड़कन है तू हर दिल की कोरस के साथ मिलके सुनते हैं, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी।

ये हंसी आंख जवां जुल्फ ये बहकी हुई चाल, कौन से दिल में नहीं तेरी मोहब्बत का ख्याल, जिस पे महबूब भी मर

धड़कन है तू हर दिल की। शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी के मधुर आवाज में कोरस के साथ कंपोज बाय मदन मोहन जी। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को श्रोताओं, और इस बार एक पुराना मूवी दुनिया ना माने, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी को लाते हैं प्रोग्राम में। साथ देरी है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, सुपर हिट सॉन्ग तुम चल रहे है मदन मोहन जी के सांस पर, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ सुपर हिट सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

beautiful song, wonderful song, la Crocodile Churrane Wala, the mighty Mukeshji, arsad de rahi thi Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, mahan sangeetkar Madan Mohan ji ke saanch par. फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है अति सुंदर प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम गीत और गजल ओत इस गोत आप सुन रहे हैं। एक और अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं यारो, फ्रॉम द मूवी अकेली मत जइयो 1963। और इस बार प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, क्या बात है, वाह।

तुझू भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 07 3 6 2 2 7 4 और स्टूडियो का तार का नंबर 07 3 2 6 2 7 7। खास फरमाई से हो या तो जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट हो या तो शोज वगैरह, उसके बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है हम लोग आप मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप अजमा कर तो देख, सभी जानकारी बैलेट एडेंस कांतोर यूरो अपनी 7 3 5 6 2 2 7 4। जो भी रेडियो का काम हो दें कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रेकलाम बनाते रहना यारो, कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। लव यू ऑल। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए आवाजों की तरफ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, और अति सुंदर बयान कॉफर्ड सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं न्यू स्टाइल पर इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट सूरज जोगन। सूरज जगन के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ही इज ऑल्सो अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ग्रेट सिंगर। तो मिलकर सुनते हैं दम मारो दम ऑफ सूरज जगन स्टाइल। यस yes.

डमारो डम इन न्यू यश सूरज जगन के स्टाइल में ये अति सुंदर एवरग्रीन सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना आज के ये हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है। अगला बयान एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफी दिनों बाद कुछ निकाला है, द ग्रेट कैलाश खेर के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान लिखा है महान लेखक इस जमाने का ग्रेट कुमार जी और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर मीत ब्रॉस अंजान। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे निशान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Great song, Mary Nisha, from the movie Oh My God. Mahan Gayak the Great Kailash Kher ke Madhur Awaaz mein, Mahan Lekhak Kumar ka likha hua yati sundar bayan, composed by Meet Bros Anjan. Found Hindustani Radio pe aap chun hai, Ratri ka karyakram aap sun rahe hai. Agla bayan सुनाने को जा रहे एक बार फिर ये उभरता हुआ नौजवान कलाकार जो टॉप टॉप सॉन्ग्स अपने ही स्टाइल में एक नया कुर्ता पहरा देता है. तो मिलके सुनते हैं आवारा हूं को क्या धुन बना दिया ये द ग्रेट सूरज जगन.

0: Amazon shopping app
1: in a new yasha and gestoken door Suraj Jagan, mahan gayak hamare Bollywood film industry ka is zamane ka. अगला बयान एक अति सुंदर बयान है नौजवान कलाकारा स्नेहा भट्टाचार्या जो नए नए अपने कदम रख चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में. लाइव रिकॉर्डिंग अति सुंदर बयान पहली जिंदगानी, मिलकर सुनते हैं.

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और वो भी स्नेहा भट्टाचार्या के मधुर आवाज में। फाइनलिस्ट ये थी हमारे सारे गामा पा कॉन्टेस्ट 2023 में, en ze eindigde op de vijfde plaats, maar wat een stem zeg. Aglabiani si trake kuchinene awaze nene kalakare aap sun rahe hai. Sunil Shetty ka likha hua ye ati sundar bayan ek baar phir sunan ko ja rahe hai aap sabhi ko. Suraj Jagan, Neha Kapoor aur Harun Gavin ne milkar beautiful song Another Jacket.

0: अमेज़न से।
1: ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अति सुंदर कंपोजिंग बाय ये अति ब्यूटीफुल और जबरदस्त टैलेंटेड गायक है ये हमारा, जो अभी आप सुना श्री सूरज जगन जी के मधुर आवाज में। एंड म्यूजिक रेयरेंज बाय की सी लॉय श्री, क्या बात है, वाह। तो मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है कुछ ज्ञान के बातें अब हो जाए। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के विद्वानों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने फ्रीहेट आजादी छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं। कुछ जीवित है और कुछ भी भगवान को प्यारे हो गए, और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ, यही आशा उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग इन बातों से जरूर प्राप्त करेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री क्लोद अफलाइन, हे वॉज फ्रांस स्क्राइवर आइटखीवर एंड डिक्टर ओक पी एस वन एफन अफ सीन लीव वन 1901 तो 1992। और क्लोद अफलाइन ने कहा है आजादी के बारे में यारों की, द मेन्स दी फ्रीहेट ऑफ एस्ट डेंट आन गेलुक। आगे में कहा श्री थॉमस मन, है वॉज एन डच ऑथर क्रिटिकस एंड नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर 1929 en leefde van 1875 tot 1955. और थॉमस मन ने कहा है आजादी छुटकारा फ्रीहेट के बारे में यारों की, डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेड मेट फनाटिस्म इज फ्रीहेट डी uit pure goedheid en humane skepsis niet meer aan zichzelf gelooft ten ondergang gedoemd. Een mond vol maar heel goed. आगे में कहा है श्री बापू जी, हम लोगों का अपना महात्मा गांधी जी, है वॉज एन इंडियाज पोलिटिकस एडवोका

सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर इन बातों से प्राप्त किए होंगे। तो एक ही दम बढ़ते हैं, कुछ नगमे रह गया है नए नए आवाजें सुनाने के, तो एक और नया आवाज जो भी फाइनल में पहुंच चुका था सारे गमापा ट्वेंटक का, नाम है रेक बासु, और रेक बासु के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ओ बेदर्दिया।

हंस के मिलना था उसकी आदत, मगर मशहूर गाने वाली इस जमाने का उभरती हुई कलाकारा निशिता शर्मा जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुना। म्यूजिक कंपोज बाय अमजद नदीम अमीर और अति सुंदर बयान को लिखा है अजीम शिराजी। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आप लोग एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और ही बहुत ही मशहूर गायक इस जमाने का, जो कुछ पुराने नगमे को नए धुन में और नए रिदम के साथ सजा देता है। रंग बरसे सूरज जगन ने इस तरह से सजाया है।

का हैप्पी स्टेशन फार हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होठों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारे प्यारे। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरी जुहन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

होठों में ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन 5 रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ हिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज़ आते हैं, एक दूसरा आवाज़ भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

आफ्रिका ह्याप्पी सिल्फा हुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकसानी

0: ting ting.
1: Lock your ting, lock your ting, lock your ting.
2: Now, Mr. Tasif Bucks. और तस्वीर बस आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स काउंटडाउन।

परिवार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिंग मोक्सी है। और मिसिंग मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉलो में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए नाम सस्ती काल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार के पैगाम।

0: दोस्तों, हम तुरंत तुरंत और तुरंत चलते हैं वो है सूरीनाम के ओर। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग जानो है जब से एनडीपी का रखेरिंग आयल है दोस्तों, जब से एनडीपी का रखेरिंग जैसे आयल है तो इखरान कॉन्फ्रेंसिंग बारे में आप लोग जानो है जो चांद सतोखी ने बनाए थे अपने जमे पे कि लोग अपना जो जमीन है यानी लांटी जगह जो उसको मिला है वो खरीद सकते हैं लांटी से यानी एकन दोम बना सकते हैं। तो इसमें करीब 15,000 लोग अपना अपना जमीन को और यानी कि जाकर खान कॉन्फ्रेंसी का एक दोम कर लिया, लेकिन जैसे ये नया रखेरिंग आयल है भाई खलैक ओके स्टॉप कर दी इसके दर्द मखेल मान लेट स्टेर कर नोक बेस्टमैन से जो मिनिस्टर हैगा खेबीबी का वो ये कह दिया है कि बोले कि जितना आदमी जगह पाई से बोले पैसों बोले सब लौटारे जो ऐखन दो में बोले वो फिर लांटी के हो जाएगा। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंडलक तो का बोले है मिनिस्टर का बोले है फन खेबीबी के और वो बोले है बोले ना बोले कि बतिया ऐसे ना है बोले जो आदमी के रोंत हो चुकल है जेके एखन दोम कागज मिल चुकल है सगरो तीकन हो चुकल है बोले ओके हमें ना माखेगा तुरख द्राई करे बोले रखा नहीं बोले बाकी जोन के अभी तुरख द्राई ना भइल है और पैसा तू भर दे ले बाट मतलब कि जेकर अभी ना रोंत भइल है और तू पैसा भर दे ले बाटे का बोले है सेंट्रल बैंक में बोले ओकर पैसा बोले हम तुरख देबे जोन तो सखवा दोरो ना जाए। तो ई रखेरिंग एनडीपी और गगरी रुसलांद के रखेरिंग हैगा और सब क्वालिटी जितना क्वालिटी के आदमी है ओ मा पेयल है बेफर दुनिया भर के भैया है लखरूप है सब मिलजुल के ये सब काम करी। इस वन क्वालिटी में खाली बपाल एनडीपी ना करे है सब कोई एकर बारे में एनडीपी के और नेक आंध्र पड़ता जो सामोवेर करे सब एकर बारे में देखो क्या हुआ है बड़ा जबर घेचा चानी हुए भैया। तो एगो नोतारे से जेकर नाम बा जयनंदन सिंह, नोतारे जयनंदन सिंह जो है वो एकर बार कार्लो जयनंदन सिंह एकर बारे में का बतावे तरी सुना जाए तो
1: versie maar daarvoor moesten er uitvoeringsbesluiten gemaakt worden en dat duurde op een of andere erg lang. Was in 2009 en toen trad de regering Venetiaan af, is het in de ijskast gebleven. En in 2016, en dat weten velen niet, en terwijl het bekend moet zijn, is de eerste grondconversie onder leiding van Hoefdraad. Dus de regering Boetboot. En het is niet dat ze tegen waren, maar ze hadden hele hoge tarieven. Je betaalde 30-40 euro per vierkante meter. Satoki heeft een halve euro van gemaakt. Maar oké. Maar bijna niemand deed dat. En dat is dan weer opgenomen tijdens de regering Satoki. Brunswijk zei het dat Brunswijk ook niet wilde meewerken. Dus Satoki heeft dus op basis van een nieuwe grondconversie besluit. Maar gebaseerd op de wet. Dus het is helemaal conform. Dat garandeer ik hoor. Is dat gebeurd, die conversie. En als er eenmaal geconverteerd is volgens alle wettelijke regels, kan je dat niet terugdraaien. Het werd...
0: Dus ये बातचीत हैगा जो नोटारिस कार्लो जननन सिंह यहाँ पे बताए है कि ये जो वेत है ये बौथर्स के 23 से भी सबन एन कर ले रहा, फिनिशियान भी एन कर ले रहा, बाकी उस सबके जो पैर फिरकांता मीटर रहा उस सबके प्राइस बहुत ऊंचा रहा। बेना फिर तक यूरो पैर फिरकांता मीटर तू वो बेचत रहा और कोई ना की नहीं भैया उतना महंगा आदमी के पैसों भी चाहेंगे तो जब तो के जाए के खरों कॉन्फ्रेंसी से फिर तक एरो पैर फिर कांते मेहतर एगो जगह की ने घाईगा तो बेचने तू जा क्लार खमा के वो किले ना तो समय पे कोई ना किरत रहा लेकिन इचियुआ चल गए रहा फिनिशियान भी इन कर ले रहा उकर बांत में बौतस के रखेरिंग भी कर ले रहा और जो हुफ दरार भग गए आज वो मांगत रहा इतना में बेचे कहीं लग कोई ना करे तो संतोखी जली सेगा तो सस्ता में करे जो जनता के सीकर है इतरे अपन जमीनिया किन लेवे जे माँ वो रहे है। तो अब जी ई रखे रहे आयल थे एक के बंद कर दी से सोचे संतोखी के हैं और यहाँ जैसे जनरल सिंह बोले हैं बोले जितना चाहिए वो फोकस वेत काम भैल है इमा इको इली खाले वाला चीज के कारभार ना बैले जननन सिंह वर्त उगते जे रखे रे बहुत से खबर एक कमाक फने सेल्फ द मोकलकेट ओम खरोत ऑफ द सेटन एगन दो मेंसे बोले फर्स्केल वा इरा द कोस्टन द स्टेज नाम अन सिंगल होकर वास पास ऑन द प्रेसिडेंट से तो की वर्न टैरिफ फोर्स फला बॉर्डर फील मेयर बर्कस अनफ्राग इंडिंदे And for the rest, is helemaal niet dat je Stanley Suro Paviro via grond en bos beheer ke om gelden terug te betalen aan burgers. Bole een paiswa, bole terug maar 15,000 admitoletjukel he. Sinds de invoering van een goedkopere regeling hebben meer dan 15.000 personen een aanvraag ingediend. Jema 659,5 miljoen SRD staatskas mee eigen hem. Abbatia ie via ie. चकल्लेस अब देखो जननन सिंह भी बोले हैं और हम भी बोलेला 300,000 से ज्यादा अने साक लड़े हैं ही भी अपरे के तो ओके कहां से पैसा रहेगा ये सब के भरे के भैया वो देखो जनन से कम ही भी ऑन द दोषे न्यू ऑल मैन अन सिंगलिक फाइनेंशियल फॉरप्लेटिंग है एट ऑफ ध्वंग सोमन टेकन द ondergrond vraagt hij zich af hoe de overheid denkt om te gaan met de belangen van de duizenden burgers die op basis van bestaande regelgevingen kosten hebben gemaakt en verwachting hebben gebouwd. Natuurlijk, het moet er kostenkrisis zijn. Daarnaast wijzen op dat personen die wel een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen eigendomstitel in handen hebben, juridisch gezien mogelijk nog steeds in aanmerking komen van de conversie zolang de beschikking geldig is. Daarmee lijkt het hoofdstuk rond de grondconversie voorlopig nog niet afgesloten. De itra dheer karja hai, matlab ki bhare kahega GBB ke, straks een strafrechtzaken en zo, aur umange admin ke paisa lautare, dat lijkt me heel erg sterk, maar ja, aur bappa, isab ke apre paisa na hai, aur usab mange, का बोले है सब खरों तो हम जाएले भैया जोन आदमी हंसू के बोट इधर उधर के बोट चलावे है मेर सौरख के लिए उस बैरख के बोट जोड़ पा बोले पांच बरिस से उस सबके लांटी पैसे ना भरी से सब्सिडी ना भरी से लांटी भैया बोले द बोट बोनर्स हाउदर्स जो बोले बोले पांच बरिस से हम लोग के पैसा ना मिलल है जो लियो उस बैरख के और का बोले कमोवेन के बहुत हौदर सेगा और बोले ना मेर दान पांच बड़े सब्सिडी पैसा बोले हम नो ना पहले उसे ऐस करे मंगर के कि जो अने मिनिस्टर है ते जी ते के रेमोन लानफेल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बोले है उसे के चाहे भरे के और एमा एनडीपी के पार्लियामेंटारी है अनसडी फोर सेटर हैगा यानी कि फी बेस दे के यानी कि ट्रांसपोर्ट के बुटियन के बोले सैन द बोथ होल्डर्स नी आनखसलोटन सैन बाय दिस वरेनिंग द मेज गोल्डुलका बोथ होल्डर्स इज नाम दिस ऑनलाइन वर्ड से केयर ऑफ केयर के डिस्क्रिमिनेट व्हेन इट आनकम्स ऑफ द बताइंग सब्सिडी ते एनडीपी के डीएनआर बोले है और बोले पांच बरिस से बोले कि फरहुकिंग बेड फॉर रखेर एंड ही रोये सेंट आन सब्सिडी एंड यू से अन यार फर्दर और बोले है मिनिस्टर खबेल्ट बोले बेलकली है और बोलेगा सादी बोले है सो मार के बखरूजी महानदलिंग में कि सबके पैसा कब भराई कैसे भराएगा तो जनता Suriname is heel erg moeilijk, mensen. Ze hebben geen geld, net als de vorige jaren, en ze moeten alles gaan doen. Ampeloon Jano, jitra admi jungle angel jaaye, bolem jala muru kriki bhaiya, jitra admi ya muru kriki is lakdi nikare, jitra admi sona khode bhaiya muru kriki jungle hai bina lan thega. Hum na gali bhaiya baki jaisi ya photo dikha hai, ki admi lo sona hona nikare, baki sipahi bole hai, surjati bole hai, bole muru kriki mein jitra admi ke hua concessi hai, bole sab ke chahi chhod ke bhaag jayegi. Sipahi bole muru kriki ke शुक्रवार 19 यूनी तक सबके चाहे अंतरिम हो जाए के ब्रोको पोंदो मुरुक्री की कौन सी जो ब्रोको पोंदो में और बोले मुतन है त्रैन ऐतलग 19 तारीख यूनी के 8 बजे सवेरे फॉर लीडर चाहे अंतरिम कर लेके एक बोले है अंतरिम फन कोर्स पॉलिसी श्री नाम री ह्यूमन श्री नाम बोले उखबितवा जोन हैगा कौन से सी रूसवेल गोल्ड माइंस के Bolet gebied maakt volgens de aansegging deel uit van de concessie van de Roosevelt Gold Mine Kehe. De aanwezigen worden opgedragen hun kamp direct af te breken, alle materialen en persoonlijke bezittingen mee te nemen en het terrein daarna te verlaten, mensen. Tosipahius heb geteemd deze. Bolet Tunaya riskeert dat het gebied zonder verdere waarschuwing wordt ontruimd. Op bolle het terratare juni mee broekoponden uitgegeven en wordt door de korpspolitie aangemerkt als een formele, rechtsgeldige en bindende aanzegging. De waarschuwing wordt druk op de aanwezigen van het concessiegebied flink opgevoerd. Ze hebben tot vrijdagochtend om te vertrekken voordat politie en leger kunnen overgaan tot actie, mensen. De admiron Juan P. Concessie Paisje van ja, or gold and mine kehiga. तो अब सब की जाहिगा छोड़ देवे के जगह या दोस्तों अमेरिका और ईरान में अंदर हैंडलिंग हुए है स्ट्रेट फन हॉर्मूस फ्राइडा के चाहे खुल जाए के सुख के आने वाला सुख के चाहे खुल जाए के फरीनक दस्तातन ईरान सोंदा के रात के फ्रीर अकॉर्ड हो गए है पाकिस्तान से प्रीमियर शबाज शरीफ मेल करिसेगा बोले है अमेरिकन से प्रेसिडेंट रोनाल्ड ट्रंप फेस्टक कर दी से ईरान के टेलीविजन पे कि ईरान अमेरिका हेफ कदोंगन है फ्रीडेस अकॉर्ड ता एक्सेप्टेरन द ईरान से स्टार टेलीविजन मेल दैट ईरान द फेस हेफ कदोंगन हुआ के टेलीविजन बोले हैगा कि ईरान द्वेगी कर दी सेगा अमेरिका के कि यू स्टॉप करके Een van de belangrijkste gevolgen van de tussentijdse akkoord is dat straat Hormuz in Sukrwaike in Demse Kuljaike. De vijfde van de olieproducten gaan door deze zeestraat door. De Iraanse blokkade zijn de brandstofprijzen wereldwijd fors gestegen, mensen. Obolega, Jape, daaronder valt die van de voorwaarden dat de doorvaart 30 dagen na de orde teken weer op een niveau van voor de oorlog moet zijn. Als tegendien zou VS de maritieme blokkade van Iraanse haven beëindigen. Want Amerika wie Iran kesab havens blokkeer kareba. Iran zou verrijkt uranium gaan verdunnen. Bole hega jun uranium ke waren bole ook een pater kariga. Een belangrijke knelpunt is het verrijkt uranium van Iran. De VS heeft daar grote problemen mee. Trump zei eerder op zondag raadke. Bole hega. Bole geen haast te maken met het verwijderen van het nucleaire materiaal in Iran. Hij kondigde strenge inspectie aan zonder details te geven. Bole hem lo inspecteer karab kichi yon yon to bom banayte. Maar ja, uranium se bole hem lo inspecteer karab aik takab. Wachten op reactie van Israël Hezbollah. Hoewel Israël en Hezbollah abbe tak lade niet direct bij de onderhandeling betrokken zijn, staat in documenten dat er een einde aan de oorlog op alle fronten komt. Inclusief de aanvallen op Libanon. Toch heeft Israël herhaaldelijk verklaard Hezbollah te blijven aanvallen. Zondag waren er nog aanvallen over en weer mensen. Amerika, Israël, februari is het blijven. Grootschalig aanval door het hele Iran. Sindsdien zijn er aanvallen over en weer in de Midden-Oosten. VS en Iran praten al maanden over de mogelijke vredesakkoord. Dat je chabat en bijaki, jagarawa, rukjai, terri hambilun, telul, apantari, terri oudste stamme, kinsa, bijaki, stad, obahutana, hè. Lekker, terri oudste stamme, abbe 2,20 euro, hè, pe, hamari janta. Abbe, hè, pe, mahanga, hè, telwa. Mensen, Suriname, bijna, permeester, bara, Jorgusan, he, aurie, permeester, NDP, ke, udher, ka, bole, gaya, din, gusan, he, bole, he, डेढ़ घंटा से दो घंटा ले उसे पार्लियामेंट में बैठ के अगोरी से फरखादर करके और रखेरिंग बहुत अल्लातिक आयल है। बोले रखेरिंग बहुत अल्लातिक आयल है और बोले परमेश्वर हाल फ्लिंक रखेरिंग लात उस मेर दान अंदर हालफ इर वक्तन। बोले हम लोग के बैठ के अगरवाई से भैया परमेश्वर डेढ़ घंटा रखेरिंग वहां के अगुल्ले बाटे तब तू लोन इतना बड़का हैरी मा कर करे है। सूरीनाम में आदमी जोन खेत और पहले तो ही लोग के समय पे अनफ्राक करत रहा मर गए अब जगहिया ओकर नाम पेनाइल है। 40 बरिस पे 50 बरिस उसप अगोरी से बरिसन से गोरी सबे कितना आदमी अगोरे और खेतवा का गचुआ कहाँ कब मिलेगा। क्रोन फ्रोन कॉन्फेरसिक तो लोग स्टॉप कर देले बाटे आदमी अगोरे है कि कब इधर और चलेगा अतुलन अंदर हालफ ईर में चिल्लाई के शुरू कर देले है। जनता ये जा है बेरखल स्टंप में जनता ये कहीं अस्प्राग जा है तो डेढ़ घंटा ना दिन दिन भर सोम्स अगोरे है और कोप क्राफ फॉर स्टेरकिंग आदमी रोज अगोरे कब हम पैसा स्टोर्थ हो ओकर बारे में दस परमेश्वर। लेकिन वाला जो है सूरीनाम में बहुत ज्यादा भैया जब कोई से अस्पराग करियो 10 बजे तो 12 बजे आवे है और सोस बेलवा न करी सोस आईबे न करी दत है पिक्सल ऑफ मी खमाक में से फिर भी गैली करवाए भैया तीन तीन चर चर गो अने इमर से अदमियन कोनो आवे कोनो आईबेन करे कोई बेलवे ना करे भाई ऐसे सूरीनाम के चाल है हमारे जनता। तो कौन चीज जब तुलो रखेरें के आदमी अस्प्रक से काम ना करे है तो जनता बिचारा हमार का करेगा। यही मुतद खुए फोर बेल साइड ओवर अस्प्राक इन इन इन इट लॉन्ग सूरीनाम एंड द से यही सेल्फ नीड मेन से द अब भैया परमेश्वर और भैया गया दीन और लोग वहां पे जो बैठ के गोरत रहा ये सब बहुत गुस्सान है। ही अब बतावे को वेट स्टार्स बखरूतिंग बनेगा तो ये जैसे सेशन 20 तक के ओपन 12 फरखादरिंग होएगा 10 बजे बाकी सब 12 बजे शुरू करी से भैया हेड ब्लैक द पार्लियामेंट मेयर दैन अंडर हाफ यूर ही मुतर वक्तन ऑफ द रखेरिंग। और एक बारे में फ्रक्सी लाइडर एनडीपी के परमेश्वर रमीन परमेश्वर बोले कमिशी फॉर सेटर जोन हैगा वेस्ट प्रोडक्ट के पार्लियामेंटारियस बोले हैगा वेकन लंग दाखन है बन खमा बोले एंडाला दरखेरे उस मेर दन अंदर हाफ यूर वक्तन वार बे है ही न्यूलिंग एंड सेन मेंस दी वेटन दैट बे द बखरोटिन बहांडलिंग एंड दैलक अस्प्राक इज दैट मिनिमल सेफ लीडन फॉर द रखेरिंग अनवीसे मुतन सेन van 7 van de 19 omdat ik de vicepresident en de president meetel sprak per meester zeer geërgerd. हाँ भैया तो एक बारे में तो हम बता दे ली है और बोले इन आले एरस्ते दिक्योने वो नीट है बन बोले इचीच ना हुई सके है। एक हैव सेल्फ फॉर द प्रेसिडेंट एंड फीसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है स्कीमा गस्कूर्ड बोले तोक सब अलातिक आइले वे है बन नोक अन हेल मान ते खान पर मेसर फिट है फ्रापांत दैट हेल वाद मिनिस्टर फाक ड्रिंगन आंदा खेमन खफरा फॉर द अनफंग फन बोखरोटिस बहांदलिंग ओम हिन बलाइट verder te hebben en implementeren mensen of zelf laat ik je eigen doosten. Toen je baat hè, hamare piare piare janta. Tab deko bhaiya ham jai hè tari se. अने असेंबली ले जेनिफर फ्रीड साम के और एनडीपी रहेगा हेव तेदन बखरोटिंग बहांडलिंग फ्राग तेगन का प्लास बाय द रोल फन कैबिनेट और बोले हैगा फॉल्कस हार्मुट की कैबिनेट बोले हैगा बलेश कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटोरिंग एंड नीड द रोल फन मिनिस्टर ओवरनेमन बेर बपालन एंड आउटफुरन फन बलेश। तो ये बात है मेफ्रॉ फ्रीड साम बोले है और फॉल्स द अहेड असेंबली स्टार सूरीनाम में फरवार्ड ओली एंड खास ओंतविकलिंग फॉर ग्रोथ बस्तियों के आइडिया के बारे में तेल के बारे में यहाँ पे हम न्यूज़ सजाई के रख ली दोस्तों। अभी आप लोग को हम एक बारे में बता बे प्यारे प्यारे जनता यहाँ पे और न्यूज मापुरुख के बताई है यहाँ लिखल है भैया यहाँ लिखल है भैया फरागा ले चले हैं ईरान के हुआ के जनता थक गए लड़िया से op bolehega de wereld slaakt een zucht van verlichting. Amerika, Iran, Katoarke, Jonsabin. Ik heb een memorandum van overeenstemming was bereikt om bijna tjaar mahina voor vijandelijkheden te beëindigen. Tjaar mahina is op Nalladje, bhaiya. Oostraat van Terhaan mee, waar men uitgeput is door jaren van sancties en spanningen, heeft de aankondiging van de staakt het vuren weinig vertrouwen gewekt dat de crisis voorbij is, mensen. Toen hoewel je jenta bole, tjaar mahina ke bole ban hoi, ab bole he jhagadwa okar baat me ka hoi, dat weten die mensen, zegt Parisa, een student in Teheran ke bole hega, die vanwege veiligheid haar voornaam gebruikt en het kan nu werken, maar beide partijen zullen hen ondermijnen op basis van hun eigen belangen. Ze hebben op een eigen belang gehad kere, hamari jenta. और आगे हम जाए भैया अरे भैया हम लोग कैफे पे सुरीनाम के ग्रिल इस्लाम थे भैया हां बोले हैं फेपे और बेज फन से अपना क्रिटिक बेस्टार बखरूटिंग बहांदलिंग तो ये भैया अब मुखोली से बोले हैं फरवेर ते द क्रिटिक दी बेज अनफ्राग फन द बखरूटिंग बहांदलिंग रखेरिंग के बोले जोन 11 बजे बोले शुरू भेल बोले एंस्ट है बोले ला है स्टेल द रखेरिंग वाज आउटकनो voor 11 uur en niet voor 10 uur, zoals door de sommige parlementariërs werd gesuggereerd. De ohike permissor bole hai, 2 ghanta, 1.5 ghanta bole laati kalle baate. Aur ee bhaiya bole na hum log 11 baje bulaya raha, 10 baje bulaya raha. Ab bole hum log 11 baje pahunche the humme jana furukura ka. To this soort mensen, hoe kan je leiderschap hebben als je tenminste je afspraken niet houdt? Je moet tenminste je afspraken hebben. Vice-president bent u. Volgens Rusland heeft de regering het verleden zelf meermaals uren moeten wachten op de nadje. Je hebt niks te maken wat het verleden is, meneer Rusland. Jij bent nu de VP. Jij moet het namelijk zorgen dat die dingen allemaal netjes en correct en op tijd gedaan moet worden. Als u zelf als een VP namelijk aan uw tijden niet aanhoudt. Mensen, hoe gaan wij ons land namelijk verder besturen? Vice-president merkte verder op dat er sprake lijkt te zijn van een politieke profilering. Maar jij doet latikelen. Wat heeft hier te maken met de politieke profilering? U bent gewoon laat en laat is laat. Daar heb je geen enkele excuses. Of het gisteren laat is of vandaag laat was. Of morgen laat. Maar het is in jouw dingetjes. Jij moet ervoor zorgen. Als een 11 uur afspraak is, dan is er geen sprake om 12 uur daar te komen. En dat is punt uit. Helemaal geen discussie erover. En geen omdraai. Die toren is aan mijn bijhoorter gaan. Maar ook als ze met een kinka-systeem toch te lopen. Rebollet, hoor. Hoe ga je de laat me zien hoe je de kinky gaat brengen. Maar ja, op hem jaila, ik ademiek bij hem. Je ademiek, kia kia, bhaiya. Ik ben 29-jarig Finand K. hai, haan. 56-jarige op een ouderd levenspartner en wederspanning heet bij zijn aanhouding bole hij de zaak trok gedurende tijd ernstige beschuldigingen aan van langdurige seksuele misbruik binnen de relatie De zaak bole hij de slachtoffer werd eerder tijdens een rechtszitting gehoord maar kwam toen terug bij de belastende verklaring die op een partner kei en Janneke misbruiker eraan. De verdachte ontkende zowel de verkrachting als veraanrading van zijn partner. Wel bood hij tijdens de behandelingen van de zaak zijn verontschuldiging aan. Ori bhaiya Vinandjon he, bole he, partner ke is goed wilde maken, maar had hij daarop verkeerd gereageerd ook. Verklaarde hij dat zijn partner niet wilde dat hij buiten huis alcohol gebruikte, maar liever thuis dronk. Hij gaf toe dat hij in het verleden een zware drinker was. Bole pehle hem daru piet rahi aur bole bahre aur bole hum ko waskul kare bahre na pi ghar mein pi tijdens het verhoor erkende verdachte dat hij gedurende hun anderhalf jaar durende relatie één keer seks met zijn partner had gehad tegen haar wil. Bole khali ek dai bole de beschuldigingen dat hij haar regelmatig tot anale seks zou hebben gedomme wees hij echter resoluut van de hand. Bole uchit waar na hai dosto te isab ke Vinan John hij ja liekel zich verzette tegen de aanhouding. Tijdens de aanhouding werd ook een mes bij hem aangetroffen. Het geen mede heeft geleid tot de bewezen verklaring. Hoewel de officier tijdens een eerdere zitting gevangenis aan de bariskeerde ha. Toen hij op het ijsje, chou bariske ietsje help ijsje. Voor man die levenspartner verkrachtte ego en mieke op een oude KI verkrachtker het radosto. Je eigen vrouw mag je ook niet verkrachten. Dat is dus gewoon. Amare Piare Piare Chanta. Dosto, discussie en discussie. Discussie over leningen en blok 58 te janne telkebare. Me amare Chanta. Discussie bij de assemblee me. 15 tarik juni me jabar op een discussie bij de Ebook Jones en Lonjano. Bhaiya bahut jabar discussie kare he. Ook de andere mensen stellen dat uitblijvende aflossing jonba Ruwang VHP ke bole hega bole 134 miljoen American dollar 2022 mee euro 165 miljoen dollar 2023 mee of 371 miljoen dollar 2024 mee of 271 miljoen dollar 2025 mee bole hega. Een VHP-fractieleider Aziz Kumar duidelijk kreeg dat het om royalty gaat. Wang stelde verder dat de deviesreserve groeide van 0,4 miljard importdekking in 2020 naar 1,6 miljard in 2025 mee. Euro inderdaad mensen, toen groeide dat. De ikker waren met DRA met bara discussie hoe bhaiya sab koi agore hega kab paiswa awe hum bhajanwa banai aise chijwa hai na hamare janta tulun jano hamara Suriname ke vishwas bahut kam hai hamare janta hum jaiye Sweden ke aur bhaiya abe Suriname ke vraag verklachting ke bare mein tayari ego Sweden ke admi bhaiya apan aurat ke apan 120 mardana se okar sange sex karwai se bole swar prastus tu ek ghar mein veer yura ke sab ke bolai ke admiya apan aurat se sex karwa utra ghar mein upar se film banao utra reklama banao utra aur paisa on fang karta bhaiya hiya batave hega the Sweden se from ego periode pan 10 bris mein 121 mannen de man ontving daarvoor betaling. Veel van die mannen hebben de vrouw in die periode meerdere keren ontmoet voor seksuele handelingen. Zweden kebaantje te marijenta ap ikar baanen zip ahio ke pakni se or rechtbank ikke bole he zware prostitutie verkrachting melden Zweedse omroep betalen hier he bole 2 gevallen van mishandeling 6 gevallen van onrechtmatige bedreiging en dopingsovertredingen, even aan lichte vergrijping. Op olehe ikke tjenga doei zo het jaar Zweedse dele 18.352 euro. Aurat jake schadevergoeding bereiken. Op olehe volgens de rechter heeft de man zijn vrouw ook het beïnvloed en aangezet tot seksuele handelingen met in zichzelf en een online ontzetten daarvan. De rechtbank acht het werven van extra klanten voor seks bewezen. Net als het proberen om buren en anderen ertoe te bewegen seks met haar te hebben. Heeft haar geholpen maar haar droom verwezenlijk. Bole hamar auratia premangat raha. Apan sapna pura kare. Bole ichi yuwa wa premangat raha. Judge sa hai to bole hum oke help karat rahi. De aanklager zei eerder. Ki inmiddels ex-man van de vrouw chorde suke. Bole kwetsbare situatie hai. En angst voor hem had uitgebreid om zijn dwingende gedrag te normaliseren. Volgens de rechtbank. Drong de man langdurig aan, obole ook haar ouderen en gebruikte neerbuigende taalgebruik, ook bewezen naar beheil. Daarnaast werd in de zaak 29 en miljoen ook een sekskeril gaan. Ousepke, rechter Boudou Barise, voorwaardelijke straf voor deze gaan. Bole de man onkende beschuldigen, ook haar advocaat bole hij, zijn vrouw alleen maar geholpen haar lang gekoesterde droom van een leven als luxe prostituee. waar te maken. De man zegt dat hij haar hielp met boekingen en dat hij de administratierol in geheel van vervulde. Rechtbank ging daarmee niet eens. Bolle hem elkaar paisakali. Deze hem kasari, bhaiya. Amerika kan je niet likel FBI voorkomt mogelijke terreuranslag bij Koiveg. Witte huisje bij jou, hoe heb je betaald? Washington mee, FBI, bolle hega. Mogelijk een terreuranslag kunnen voorkomen. Kan die zeggen, bolle thuis een kooi gevecht eraan in de tuin van Witte Huis. Bolle hega, Fox News betaald. Kooi gevecht werd afgelopen weekend georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president Donald Trump. Ja. Tegen kooi gevecht organiseerd bij La. Voor het complot zijn tot nu 5 verdachten aangehouden. Functionarissen melden aan Fox News dat drones met explosieven gebouwen in omgeving van een evenement hadden moeten aanvallen. In paniek die daarbij zou ontstaan. Toen je baat het helemaal in de Amerika kebare mee. Toen Amsterdam aanplukken. Ik. मीठा मीठा गीत सुना दे तो अभी हम वापस आ जाएंगे

है मधुरा का भैया, और बोले लंग दूर कितना दिन हो गया बन है मधुरा दोनों परानी आज फोकाट आना इस्तीफाओ, बोले दी एयर द डील आउट मांग द फॉर रिसिटी फॉर अ रैपर सेन दीदी कॉम्स द बफुक्टाइडन द टूफुगिंग फॉर द एरफारिंग स्ट्रफ लाइटर। तो यहां बताई गई है कि असाइड मधुरा लड़े भैया कि हमें छोड़ो हमें छोड़ो हमें छोड़ो, और मधुरा के अमेरिका पकड़ के जकड़े बाज हल में भैया बताए गए कोमन मान सिलेंडर फॉर वक्तिंग इन टेकन स्टैंड फॉर यूरिडिसे प्रोसीड्यूर वारबे फरदीरिगिन मोगलिक नीत अलेन द अनक्लाग्टन साल अनफेक्टर मार ओक द रेगलमातिक फॉर मधुरास अरेस्टासी टेर डिस्कसी साल स्टेलन। तो ये बैतलांड की न्यूज़ भी हम आप लोग को पता थे जानता आप लोग जानते हैं वो मुझे आलस इन हुई से वो अंबिच अल्खमीने न्यूज़ तो खान लीजिए फॉर ओंस आले मेंज़ यो ये कैन नीट आलस मां ये खान ये बेस्ट डून तो बपाले डिंग्स बपाले न्यूज़ तो खान लीजिए। ट्रॉपिकल टेंपरेचर एंड बनाउटेड एंड प्रकनाक्तक दिस वीकेंड वर्ड पिफन या लिखा ले भैया हम ना बोलीला यहां पर लिखा गया है, लेकिन उसके बाद हम चलते हैं और आगे भैया 4.5 बरिस के जहल पाई से सितार्त एगो जगह के नाम बा सितार 4.5 बरिस के जहल पाई से अख्तन सेफ तक यार के अपन माई के माढ़ाड़ी से एक मिला और होखरस तराफदान उपमार मिनिस्टर हाथ के एस 2023 में ओके ओवरडोसिस इंसुलिन देसेगा द यूएस यूसी एस 2 वीकन खलीदन एगो 256 यारके योसिना एसके नीट मेर टरक द सेल इन ओ बोले हेगा बोले द रेखबंग फॉर द स्ट्राफ एस ते लाग ओमदा दी एन अनवोल्नोंदे अफस्क्रिकवेकेंडे वर्किंग नन अंडरन हेव द फरदाख्त क्रेक एन मिल्डर स्ट्राफ फॉर मोर्ड stel ze recht bang. Dat komt door al dat de pleeg gepleegd is in een heel bijzonder context mee. Obolehe, omdat de vrouw van minder toereikingsvatbaar is. Daarnaast heeft de zaak volgens de rechtbank lang geduurd. Er verklaart dat ze haar moeder op eigen verzoek een hoge dossier insuline heeft gegeven. Omdat de vrouw eerder gezegd had niet meer te willen leven. Volgens de rechtbank is niet vastkomen te staan dat de moeder een serieuze, weloverwogen, duurzame wil had van het overleden. Tebolehe, maar mij apreem mee bolehe. हां कि हमें हमें बहुत दिन ना मांगिला जिए बोले हमें तू मार ढाल लेकिन कहीं फरकलारिंग ना है दोस्तों और फरकलारिंग जना है कहीं त जाओ 4.5 बरिस के पीपा ट्रैक करो तो जानो चीजवा कैसे। अब देखो यूक्रेन भैया रूसलान के उल्टे अनफॉल करे है ओली रफ ने मॉस्को में और ड्रोन से असाइड यूक्रेन दागे भैया यूक्रेन हैव अ रशियन ओली रिफाइनरी अनफॉल इन मॉस्को मेल द यूक्रेन से प्रेसिडेंट और ज़ेलेंस्की बोले है बोले अब की हम लोग मॉस्को में कल्ली बाटी फन यूक्रेन लंग स्टांत रकेट बोले हम लोग चले लिबर्टी हुआ के बर्खन मिस्के मॉस्को बोले हैं बर्खन मिस्टर मॉस्को के की चीज आ रफिनरी में लगल है और बोले हैगा 35% फन ब्रांस्टोव बहुफ्ते फन होफ्स्टाट बोले है द फोर्सिट फॉल्कंस द यूक्रेनियन न्यूज बोले है फॉल्कंस Russische luchtverdediging Moskou met 60 Oekraïense drones. Bolle neergehaald, bolle 60, bolle hem grijlig he. Bolle vanwege de aanvallen werden de luchthavens bij de hoofdstad tijdelijk gesloten. Russische reizigers hebben bijna dagelijks te maken met de annuleringen of vertraging van vluchten door de dronewaarschuwingen. Rusland moet gedwongen worden een eind te maken aan de oorlog tegen ons volk. Ik erbaar met Zelensky bolle hega. Oekraïne vormen een belangrijke onderdeel van de werkelijke druk. Bolleke, hamle druk karila. Kurusland ke chahi jhagadwa. Ban kareke. Obolo doro jahe. Dakhawo dit doen toch mensen. Zo gaat het.

0: और दोस्तों इसी चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेंगे। घंटा हो चुका है, सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात जरूर फिर से रेडियो माध्यम के रेडियो फाउन के माध्यम से होगा। दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। नमस्कार, बाय बाय, एंजॉय बाय।
1: दोस्तों मुकेश माइती मुकेश, करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओहे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छिपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं, आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोरा ना दिल हमारा।

प्राणमी आखिरी प्राण बस आखिरी लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

उल्लो मोर कहनिया हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और दोस्तों ये था और ये अनिल भीम। हम एक सॉन्ग का और जाते हैं आंद्रे रॉय की ओर, इंद्रनील रॉय की ओर हम जाते हैं दोस्तों।

सी बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और बुध राम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुखा चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुखा चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शो का सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो

0: To enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योगेश बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं, तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए। और वो है आजा सनम

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाचिके लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

और ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग के ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Out the heart of the millions, Mukesh, मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी के मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का गीत है।

लो जीने वालों से और मरे हुओं को रोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो। बोतल में बंद जवानी, पिल पिले दिल जाने।

पीछे दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो हाय बोतल में बंद जवानी पीले पीले दिल

0: पीछे बच्चे की ताली, घर वाली घरवाना आया, अब दरवाजा खोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो। बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवां, पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है। तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है, तो कुछ प्यार के बातें करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का, पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को, दान मुझे वेल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहाँ पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मौफी का नाम है, मौफी का नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले, जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जे लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहाँ पर बताए गए हैं, आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों, और
1: आओ प्यार करो,
0: आओ प्यार करो यहाँ पे लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब जाना प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे और खबरों का हर सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हिल फिल्मेंस सैन खसकाई दे प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

प्यार का दोस्तों दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

और दोस्तों, अगर आम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है। तो आपको खबरों का हर सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। वफा ना रास आई

वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ट सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग्स किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर जा रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी उठो, समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

with me. और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

आते हैं तो रोना पड़ जाती है। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: मैं हूँ।
1: जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे न जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से ज़ाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी, आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले, मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माई पापा'स फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गोल बदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

तमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार, मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूमके, रात की जुल्फे झूमके, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

नमाई थी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मालिक यानी जो सिर्फ खुशी का मालिक है वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल। अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5।

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाव में। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: रहे थे किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

तीर चल गए, अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

सुंदर है थे रंगत तेरी सूरत सी, किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन की, किसी में नहीं नहीं। फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से

जी ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

ही आप सुन रहे थे नारुतो रुतो नारुतो नारुतो मेरिजा फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से भी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जागा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे

चंद मूवी वारिस से हमने पेश किए है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।